मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार 8 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलांड गेरोस में खेले गए रोमांचक पांच सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को भी संतुष्टि मिले और दूसरों को भी कष्ट ना हो।

हे ईश्वर, मुझे ऐसा रंग लगा दो, अर्थात ऐसी भक्ति दो जिसका रंग आजीवन मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा रमा रहे, कभी भी उस भक्ति का रंग मुझसे ना छूटे।

कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को किसी भी बाह्य तीर्थ, मंदिर या कर्म कांड में खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हर मनुष्य के भीतर ही निवास करता है।

ईश्वर के नाम का जपन करने से, उनके नाम का सिमरन करने से मन शांत और स्थिर रहता है। मन से बुरे विचारों का निदान होता है और इसे असीम सुख की प्राप्ति होती है।

हम अपने बचपन को यूं ही खेल कूद में गवा देते हैं और जब यौवन अवस्था आती है तो शरीर के बल और रूप का अहंकार होता है और इस तरह से हम अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति के बिना ही व्यर्थ कर देते हैं। किंतु जब अंत समय आता है तो हम इन सब चीज़ों के लिए पश्चाताप करते हैं। किंतु फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसलिए समय रहते संभले और ईश्वर की भक्ति करें।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषिकार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में

काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ ना हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की थी। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अगला कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात हम आज कर करेंगे पशुधन की देखभाल, इसके बारे में। किसान भाइयों, पशुधन की देखभाल तो देखा जा तो सारे साल रखनी पड़े है, लेकिन ईब थोड़ा सा मौका ऐसा है कि गर्मी पड़न लग रही है। जब गर्मी पड़े है तो उसकी संभाल थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, नुहाण की भी बढ़ानी पड़ेगी, पानी पियाने की बढ़ानी पड़ेगी, उसके जो बंधन खोलन का जो हिसाब किताब है उसमें भी ध्यान करना पड़ेगा कई बातों का। एक तो पशु थोड़ा सा बाहर जरूर घूम का, इस बात का ध्यान करना है, लेकिन घूम के किस टाइम आवे, जब ठंडा मौसम हो ले शाम के टाइम पे। दिन में पशु बाहर चाहे बेशक ना बाहर जाओ, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा सा हांड फेराओ तो शरीर खुल जाएगा। और तालाब में भी ले जाना जरूरी हुआ है, लेकिन हो के रहा है कि बहुत सारे गांवों में तालाब गंदे नाले का पानी जाके तालाबों का पानी बिल्कुल गंदा हो रहा है। लेकिन इबी भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें नहर का बढ़िया पानी, ट्यूबवेलों का बढ़िया पानी दे के और तालाब ने भर ले हैं। जिनका बढ़िया पानी है वो जरूर ले कर जाएं, और जिन लागे है कि भाई मारा पानी बढ़िया नहीं है तो वो पानी पिया के, जब मान लें ऊँ पानी में लुटा के लेना चाहते हो तो ले आवें, लेकिन पशु वो पानी ना पियो, इस बात का ध्यान करना है। घर से पानी तो छका के ले जा, और फिर उसका है वो ठंडा पानी उसका है उसमें एक बार शरीर के कमर के ऊपर का जब पानी फट जाया करे तो पशु की गर्मी निकट जाया करे। जब फिर भी न्यू लग गया कि भाई नहीं बनती बात है, ना काम चलता, पानी ठीक नहीं है, तो अपने घर पर जो भी आपने नलका ला रखा है, ठूठी ला रखी है, समरसिबल ला रखा है, तो दो बार तो कम से कम दिन में जरूर नुहा दे पशु ने। शाम के टाइम एक बार हल्का सा पानी शरीर के ऊपर के लग जा तो उसमें पशु खुश हो जाएगा, उसने गर्मी नहीं लगेगी। पशु में देखो गर्मी हो है ज़्यादा इसी बात नहीं है, लेकिन सहन करने की शक्ति भी उसमें हुआ है, यह भी बात है। एक तो पानी का ध्यान करना है, फिर चराई पिलाई में तो ये है कि संतुलित उसने आहार मिल जा, खनिज लवण मिश्रण मिल जा, सूखे चारा के साथ हरा चारा भी थोड़ा सा मिल जा, और बाट बिनोला जो भी जिस हिसाब से हम गिर रहा वो भी पशु ने बहुत ज़रूरी है, गुड़ की मात्रा है, नमक की मात्रा है, ये सारी चीज़ मिल जा। एक परजीवी बहुत लाग जाए हैं, तो परजीवियाँ खतरे भाई कुछ दवाइयाँ हैं, ज़्यादा तेज़ दवाई तो ना लें, वो नुकसान कर देगी। हल्की कोई दवाई लेकर डॉक्टर की देखरेख में वो लगा दें, और उसके मुंह का छिक्का छक्का ला कर या बंधन का हिसाब इसे हिसाब से बना लें कि वो उसने चाट ना पावे। और एक बंधन का हिसाब इसे बनाना है कि एक दो घंटा किते हवादार जगह जो पेड़ के नीचे या फिर कोई ऐसी जगह है जित हवा लग दी हो खुली, उस जगह पर जब पशु बन जा तो बहुत ठीक रहेगा। क्योंकि भीतरे बंदा रहे है, पंखा के हवा लागे जा है, पशु बाहर नहीं निकल पाता, उसका पसीना भी आ जा है, वो फिर उसका भीतरे बंदा रहे है तो दिक्कत में पशु आ जाया करे। ताज़ा पानी पिलाऊँ, पानी चाहे भाई थोड़ा सा पीने में मीठा ना हो लेकिन ताज़ा होगा तो पशु उसने फिर भी पी लेगा। बाल्टी के भर के पिया दें, या फिर कुछ भैया ने खेल सी बना रखी हैं, कोई ईसे बर्तन ड्राम ईसे बड़े बना रखे हैं जिनमें पानी का स्टॉक कराया जा सके है, या ज़रूर देख लें कि पानी घना बासी ना हो और गर्म भी ना हो। तो पानी की तो तीन चार बार दिन में अपने आप हिसाब से दिखा दे पशु ने, तीन चार बार तो कम तक कम पानी पीवे, उससे ज़्यादा कोशिश कर सकें तो कुछ देर बाद बाल्टी भर के दिखा दें, थोड़ा बहुत पीवे, बेशक कोई बात नहीं है, लेकिन पानी की कमी ना हो जाए। और जो दुधारू पशु हैं भाई, उनका जो खान पियान का हिसाब है वो उसके हिसाब से रखें जो पशु ने ज़रूरत है, क्योंकि दूध देने वाले मान लें गाय है भैंस है, उसकी खुराक थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो ठीक ठाक दूध दे सके और पौष्टिकता उसका दूध में और घी में बनी रह सके। और सारी बात इसमें आई गई थी, कुछ भाई कह रहे हैं कि एक छिड़काव सा करण का सिस्टम बना लिया है पानी का, चलो है तो वो ठीक है, तापमान में गिरावट आ जाए है, लेकिन यूँ भी नहीं होना चाहिए कि वो ठाण गीला हो जा। ठाण गीला नहीं होना चाहिए, ठाण ईसा होना चाहिए कि भाई गर्मी भी ना बने और गीलापन भी ना हो। और जो भाई गद्दे बिछा रहे हैं वो गद्दे की सफाई नीचे तो जरूर कर दें, बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि गद्दे के नीचे कीड़े चाल जाए हैं, वो ध्यान नहीं करते भाई बिछे रहे हैं, ऊपरे पशु रह रहे हैं, वो दिक्कत खड़ी कर सके हैं किसी भी टाइम। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान, पानी का विशेष ध्यान, और गर्मी के मौसम को देखते हुए एक बार पानी में चाहे तालाब में जित भी मौका लगे तो पशु ने जरूर ले जा। तो ये कुछ बात ध्यान करने की थी, तो ये ध्यान करें ताकि हमारा पशुधन फिर स्वस्थ रहे और अच्छा मुनाफा फिर हम उससे मिल सके।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं, अब समय है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इण्डोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इण्डोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इण्डोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा सम्पर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चण्डीगढ़नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य CPA इत्यस्य भारतक्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, संपूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन NTA इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट UG पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षानगर सूचनापत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:15 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। NTA इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचनापत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपि तु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केन्द्रज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये ABPM जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः JP नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ MOU इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्लक्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्यपदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलेंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana or Ayushman Bharat PMJ, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. National Health Authority and the government of West Bengal

सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाज सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में किसान सशक्तिकरण पर बातचीत सुनवाई जाएगी आज शाम 7:10 पर, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

शाम 6:30 पर साप्ताहिक समीक्षा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से लिखी जाएगी। युवा संसार में हेलो जीनियस कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर।

दिन में 12:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुबह सवेरे। ये कार्यक्रम सुनना न भूलें प्रातः 7:35 पर।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर मूंगफली की उन्नत किस्में व काश्त इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर अशोक। ग्रामीण संसार में फोन इन कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:00।

खेत खलियान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर मक्का की काश्त इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे विनय कुमार अग्रवाल का सितार पर बजाया गया राग भटियार, और इसी कार्यक्रम में रात 10 बजे कलाकार होंगे डी के दातार।

सुगम संगीत कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात 8:25 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रातः 9 बजे, दिन में 1:10 पर चित्रपट संगीत और फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा रात 7:45।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 10:30 पर। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर कलाकार होंगे दीप चंद।

ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत विनय कुमार अग्रवाल का सितार पर बजाया गया राग भटिया।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विनय कुमार अग्रवाल का सितार पर बजाया गया राग भटियार। ये कार्यक्रम सुनवाया गया आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त गीता। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको दिन विशेष के बारे में जानकारी देते हैं। आज 8 जून को हम मना रहे हैं विश्व महासागर दिवस। प्रत्येक वर्ष जो है इस दिन को 8 जून को मनाया जाता है ताकि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सके। यह विश्व भर के लोगों के लिए महासागर संरक्षण में शामिल होने, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और जैव विविधता तथा मानव कल्याण के लिए महासागरों के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये दिन व्यक्तियों, सरकारों और संगठनों को भावी पीढ़ियों के लिए महासागरों की रक्षा करने के लिए एकजुट करता है। और श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष इस दिन के लिए एक थीम निर्धारित

की जाती है और वर्ष 2026 के लिए इस दिन की थीम है हमारे नीले ग्रह के लिए सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जो जैव विविधता के संरक्षण, मत्स्य पालन की सुरक्षा और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के रखरखाव के लिए विनियमित समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण पर केंद्रित है। यह विषय 2030 तक महासागरों और भूमि के 30% हिस्से की रक्षा करने की वैश्विक पहल के अनुरूप है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत महासागर प्रबंधन पर बल देता है। महासागर पृथ्वी के 70% से अधिक भाग को कवर करते हैं, जो पृथ्वी की कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और विश्व भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का जो है प्राथमिक स्रोत महासागर ही है। महासागर आधारित उद्योग 2030 तक 4 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देंगे। इसके बावजूद बड़ी मछलियों की 90% जो आबादी है वो विलुप्त हो चुकी है और 50% प्रवाल भित्तियां नष्ट हो चुकी है, जिससे महासागर संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। वर्ष 2026 की जो महासागर दिवस है वो हमें याद दिलाता है कि महासागरों को बहाल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत जागरूकता से लेकर वैश्विक नीतियों तक हर कार्रवाई जो है वो मायने रखती है। चाहे तटीय देश हों या चारों ओर से भूभाग से घिरे देश, विश्व महासागर दिवस सभी देशों को महासागरों के प्रति साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और श्रोताओं कार्यक्रम में बात हो रही थी विश्व महासागर दिवस के बारे में। गौर फरमाए इसके इतिहास पर, तो इसका सुझाव सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर में सम्मेलन में कनाडा के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2008 में इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया गया, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक पर्यावरण नीति में महासागर से जुड़ी समस्याओं को उजागर करना है। श्रोताओं, महासागर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। विश्व की आधी से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन ये करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 25-30% हिस्से को अवशोषित करके सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, और 3 अरब से अधिक लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में ये सहायता करते हैं, खासतौर से उन लोगों के जो कि तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। वर्षा, तापमान संतुलन और जलवायु नियंत्रण के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारे महासागर अब खतरे में हैं। एक तो प्लास्टिक प्रदूषण के कारण जो मछली, समुद्री नमक और यहाँ तक कि मानव रक्त में भी सूक्ष्म प्लास्टिक पाए जाते हैं, जो कि महासागरों के लिए बेहद खतरनाक है। महासागरों का अम्लीकरण रसायन में परिवर्तन लाता है, जो खोल बनाने वाली प्रजातियों और प्रवाल भित्तियों को प्रभावित करता है। अत्यधिक मछली पकड़ना और अवैध मछली पकड़ने की जो तकनीकी हैं, वो समुद्री जीवों की आबादी के पतन का मुख्य कारण है। तो श्रोताओं, जो कि दिन आज हम मना रहे हैं विश्व महासागर दिवस, इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि महासागरों के महत्व, हमारे जीवन में उनकी भूमिका और उन्हें मानवीय गतिविधियों से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके।

और श्रोताओं, आज 8 जून को ही हम मना रहे हैं विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसके लक्षणों की समय पर पहचान करना और मरीज को सही इलाज के लिए प्रेरित करना है। मस्तिष्क ट्यूमर से जुड़े मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। जागरूकता की कमी के कारण अक्सर लोग इसके लक्षणों जैसे कि सिरदर्द या कमजोरी को सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। शुरुआती चरण में इसका पता लगने से इलाज में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और बहुत सारे इसके लक्षण हैं श्रोताओं, जो विश्व मस्तिष्क दिवस है उसके

मस्तिष्क जो ट्यूमर है श्रोताओं, इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि लगातार सिर में दर्द रहता है, विशेषकर सुबह के समय में बहुत तेज़ दर्द होता है, और अचानक बिना किसी कारण के मिर्गी जैसे दौरे आने लगते हैं, बिना किसी पेट की समस्या के बार बार उल्टी आना भी इस बीमारी का लक्षण हो सकता है। और याददाश्त कमज़ोर होना या स्वभाव में अचानक बदलाव आना भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। बीमारी का निदान होने पर चिकित्सा विशेषज्ञ स्थिति के अनुसार जो है कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि सर्जरी, ट्यूमर को निकालने के लिए सर्जरी कर सकते हैं, या रेडियोथेरेपी से जो है वो ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, या दवाओं के माध्यम से ट्यूमर को बढ़ने से रोकने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे उपाय हैं जो इस बीमारी को अपनाने, इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपनाए जाते हैं।

श्रोताओं आपको बता दें कि इस दिन की स्थापना वर्ष 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। यह एक गैर लाभकारी संस्था है जिसने मरीजों और चिकित्सा शिविरों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत की। समय के साथ यह स्थानीय पहल एक विश्वव्यापी कार्यक्रम में बदल गई, जिसके तहत दुनिया भर में संगोष्ठियां, स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। और इसके इतिहास की बात करें तो 1879 में पहली सफल सर्जरी की गई थी। मस्तिष्क के ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटाने का जो पहला दस्तावेजी प्रमाण है वो 27 जुलाई 1879 का है, जिसे स्कॉटिश सर्जन विलियम मैकवेन ने जो है इन्फर्मरी में अंजाम दिया था। और 19वीं सदी के अंत में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के विकास से पहला ब्रेन ट्यूमर का निदान लगभग असंभव था। आधुनिक समय में एमआरआई और सीटी स्कैन जो है ऐसी उन्नत तकनीकों के ने समय पर ट्यूमर का पता लगाना संभव कर दिया। और श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष एक थीम के तहत मनाए जाने वाले इस दिन का जो वर्ष 2026 की थीम है वो है अ क्लोजर लुक, यानी कि करीबी नज़र। यह विषय चिकित्सा शिविरों और आम जनता दोनों को मस्तिष्क ट्यूमर के शुरुआती चेतावनी संकेतों पर ध्यान देने, शीघ्र निदान को बढ़ावा देने और इलाज में आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

और श्रोताओं, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को यहीं समेटने की। नमस्कार।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और 8:15 पर अंग्रेजी में, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय

0: में बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं दीप चंद को।
2: करसन कहना लग्या रो कमण तना एक मिनट की वार करो नरसी।

इसके साथ ही हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे दीप चंद को। ये कार्यक्रम सुनवाया गया आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। और अब श्रोता सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइश एवं संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति के गाए हुए गीत के साथ। फिल्म का नाम है जुबैदा और इस गीत को सुनना चाहते हैं मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप, रौनकदीप कौर, खांडवी जलगांव से राम धाड़े, दीपाली स्वराज धाड़े, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी नीशू, देबू, परी, पीहू, पाकी कौशिक, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, आसमानाज, बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून, गुलफराज भागलपुरी। दिल्ली से इसी गीत की फरमाइश भेजी है सोनम और अदीबा ने। बागपत यूपी से एहसान अली, न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगड़ा और कन्हैया लाल। कैथल से इस गीत की फरमाइश मिली है अमनदीप की। मधुबन बनी बिहार के श्रोता हैं अरविंद, गुड़िया और भव्या। भीलवाड़ा राजस्थान से गजेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र, वीरेंद्र। जलगांव जलाना महाराष्ट्र से नामदेव, भूदेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक और अश्वनी। औरंगाबाद के श्रोता हैं वैष्णवी जगदाले और हर्षुल सावगी। भाव सिंह पुरा से वैभव और गौरव लोखंडे इसी गीत को सुनना चाहते हैं। बाकुलनी बदनापुर से मेघराज, युवराज कोलते, रिंधारा देवी, रुद्र और कोलकर इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है इन श्रोताओं ने भी। कबूलपुर रोहतक से फरमाइश मिली है रण सिंह दिलोड़, सतपाल, मंजू, रोशनी, पूजा, ओम मोर, अंकित बोस और नौरंगी अटकान की। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनोप्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो पूरी कर रहे हैं आप सबकी फरमाइश कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में जुबैदा फिल्म के गीत की।

कार्यक्रम का अगला गीत साधना सरगम और साथियों का गाया हुआ है। ए आर रहमान ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और जो श्रोता इस गीत को सुनना चाहते हैं उनके नाम हैं बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु करमरकर, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव सैनी, पांडू पिंडारा से बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, नीरू, कृष, प्रीति, मोनू, अंकित, कनिका, सिया और आर्या, सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकर, योगेश, सुनीता, मुस्कान, बाबूलाल चौधरी और निर्मल बाई। गांव मोहला से इसी गीत को सुना चाहते हैं राजकुमार, गीता, अमन, सानिया, सुभाष, उषा, राहुल, आरती और रोहित ढोचक। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर रंधावा, सरबजीत, हरजोत और कुलदीप रंधावा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और तेलंगाना निज़ामाबाद से फरमाइश भेजी है शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश और आशिफ शेख ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार। और शिरपुर जैन श्रोता संघ के श्रोता हैं गिरीश देशमुख, सोनाली, मनीषा, विपिन, रेणुका, आरव, अश्वनी, मौसमी, सविता, विशाखा, जयश्री और जी वाई देशमुख। संभाजीनगर औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश प्रकाश, सोहम, सदानंद, विराज और अंशुमन ओवी। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख, शामिर, वजीर, सोहेल, सैयद, तहमूर, शामिर खान और सैयद अजलान इसी गीत को सुनना चाहते हैं। महसोल सीतामढ़ी से फरमाइश भेजी है अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, साजिया, शाहीन नाज, नाजिया, नूरी नाज और ममता शर्मा और पूनम शर्मा ने। महाराष्ट्र के श्रोता हैं वडाली देशमुख, राजेश, शिव सागर, इंदिरा बाई और सुनैना, तनुजा। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। नजीद कौर, मुकेंद्र, जसबीर कौर, हसनप्रीत कौर मान ये श्रोता हैं सेरगर गांव से जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। नया पारा भिराई से वसंत सूर्यवंशी, सरोज ईश्वर, ईश्वर राज, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी। अमरपुर पेंड्रा से दीपक रोशन, वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लंबी श्रीवास्तव इसी गीत के लिए फरमाइश इन्होंने भेजी है। और छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश हमें मिली है अनिल, अंजुलता, आदित्य, कृष श्रीवास्तव की। तो 1947 अर्थ फिल्म का ये गीत है आवाज़ साधना सरगम और साथियों की।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज़ आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फर्ज फिल्म का गीत। उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों ने इसे गाया है। समीर के बोल हैं और संगीत उत्तम सिंह का है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, चांडूर बिस्बा बुडलाडा, महाराष्ट्र से नारायण खड़से रक्षाताई, पुणे से है पंकज वाडोदे, आर्या, आदि, शैलेश, सोनम, धनुषपुरी, बीटी वाडोदे और जरूड वरुड़। महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे, चंद्रप्रभा वाडोदे और रजनी ने। जरूड जरुड़ का महाराष्ट्र से ही इस गीत को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकरे, विजया मिलिन सरकरे, शेरगढ़ मलोट पंजाब से बलराज राम कालवा, भोला राम लक्ष्मी, कुदरत मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह हरप्रीत और शिवराज मान। भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुनार मेहरा। पिरदा कोरासी से इस गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता और राधा साहू की। तोरनाला वाशिम से है सुखदेव राउत, कैदी मुंडा रायगढ़ से है पुरुषोत्तम सिंह, ऊषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, ऋतु और ऋषभ। बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। हिसार से राजेंद्र सैनी और राहुल सैनी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अमरावती महाराष्ट्र से कमरूला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, शोएब खान, मुश्तबा, रऊफ मई, शाहिद और सालिया। गांधी बाग अकोला से फरमाइश हमें मिली है रमेश वैशाली कटनकर की। फतेहाबाद से बिट्टू मोटरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भूविक की। मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, मधुबाला, मिलन, उमेश, आयुष और ओम प्रकाश। चर डोगरी पिप्रिया, मध्य प्रदेश से दुर्गाराम साहू, चरखी दादरी से जगनेश सांगवान इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश फर्ज फिल्म से।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है धामनी मनोरा महाराष्ट्र से, तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल, अनुत डेरे, चंद्रकांत मुन्ना, शहबीर खान, अमोल डेरे, आकाश और गुलशन डेरे की। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा, ईशप्रीत शर्मा, सोनिया, विपाशा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेमलता की। कलानौर के श्रोता हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, विशाल नहावकर। लोहगढ़ ठाकरावाला पंजाब से स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर, शुभदीप। पतोड़ा अनूपगढ़ से इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है मंगल जनागल, रोशनी, इंदु, अंकुश और सुनील ने। पिप्रिया कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। अकोला महाराष्ट्र से सुशीला, सदानंद, गौरव और निशा। नादुरा तिरुपति नगर से संतोष, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत वसाने। लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर और राजकुमारी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। बाकोड़ी महाराष्ट्र से उत्तम जमधाड़े, स्वराज संघर्षा, स्वरीत और संविधान होंगड़े। और श्रोताओं, हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता हैं शाहजी बोड़खे, नंदा, हनुमान बोड़खे, हदगांव, आष्टी महा

महाराष्ट्र से सुधाकर कामले और संदीप कामले भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र के श्रोता हैं सदाशिव शोरात, गांव मटोर जिला कैथल से रामतिया नीलम अजय विजय तमन्ना पायल रामपाल और धर्मवीर, जाखोद से शंभू दयाल खटक बिमला अमरजीत सुंदरलाल योगेश दीपक और पूजा, मिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर दीपक प्रमिला और ज्योति, कोंडा गांव छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं सुभाष चक्रधारी कविता मुस्कान अनुष्का चक्रधारी और सच्चा खेड़ा से इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है वेद बिहारी। ये गीत गाया है अलका याग्निक अभिजीत और सपना मुखर्जी ने, जुदाई फिल्म का ये गीत है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर, आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
4: कार्यक्रम का अगला गीत राम शंकर और शंकर महादेवन की आवाज में, समीर ने इसे लिखा है, तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने, और फिल्म का नाम है बिच्छू। और इस गीत को सुनना चाहते हैं डोडी लुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देव शंकर, आरती, तुषार, डॉली, पूजा और प्रभा देवी। बन बगेरा राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से योगेश, आशा, नीरज, नितेश, नीलेश और अंजलि। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरजुद्दीन, केसरदीन और नजमदीन। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। लुमिनी अकोला से राहुल, सम्यक, भरण, मीरा बंसोड़। गोविंदपुरा राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार, रिंकी शेखावत। गांव बिरोली जिला जींद से सुरेंद्र सांगवान, अंकित और सचिन सांगवान। लोकू कॉलोनी लोहारों से इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है बिल्लू सिंह चिडालिया, सुरेंद्र, योगेंद्र, जोगेंद्र, नरेंद्र और समस्त चिडालिया परिवार ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, अलख, चरणदास और रेखा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस और एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणीता। नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाणकर। दौलतबाग मुरादाबाद से इसी गीत को सुनना चाहते हैं जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश। और बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित नारंग। नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद और ओमकार साई। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, गीता और सीता। अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री और मोहम्मद शाकिर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के श्रोता हैं ओम प्रकाश, ऊषा, अमित, हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांचल रॉय। शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति और नवनीत। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, सौरभ, योगेश, शाइना, निवान और मैंडी शर्मा।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अमीन सावरी और फरीद सावरी की आवाज़ों में फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, और इसे सुनना चाहते हैं करणपुर राजस्थान से शिव कुमार सेठी, सुनीता कमल, ज्योति शब्द, बानी और राजू सेठी, बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा रवि, आरती पटना बिहार से भुवनेश्वर, मोनू और लीलू, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी गगंदी, बेबी आरजू, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज और साहिल, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहते हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, चकला बाजार समाना से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, सुजिला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा और बलियाली भिवानी से इसी गीत को सुना चाहते हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्वेश और तमन्ना बंसल।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक, सुदेश भोसले और जसपिंदर नरूला का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है। इस गीत को सुनना चाहते हैं DLF कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह, मानसी, हर्षित, हिमांशु, वंशिका, ज्योति बत्रा, मयंक शाह, कार्तिक और गौतम शाह। गांधी चौक रोड पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और मीका विरक। मुगतसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत नीशु। रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मलोट पंजाब से इसी गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद्र संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी की। शेरीकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। परी महल कासगंज के श्रोता हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान। मीरा सराय से आफरीन खान और जमीर खान। और ये श्रोता हैं राजनगर मधुबनी के कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र और रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम, पलक और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय और गुनगुन।

और इसी गीत के साथ हमारा आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद 10:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. West Bengal is set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, ABPM Chair, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding today for the implementation of ABPM Jai in the state. Prime Minister Narendra Modi today shared a Sanskrit Subhashitam, highlighting that achieving the welfare of all living beings by striking a balance with nature has been the core spirit of our culture. In a social media post, Prime Minister noted that with this comprehensive vision, India is continuously moving forward on the path of progress and prosperity today. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan and the downtrodden. He said the government has always been inspired by Antodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to the people. The National Testing Agency NTA has released the exam city intimation slip for the NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of this month. Our correspondent reports that registered candidates can now check their allotted exam city by logging into the official website using their application number and password. Akashvani is celebrating its 90 years today. This day on June 8, 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. This red letter day marks a special moment in the cultural, information and broadcasting history of the country where a voice was born.

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:26 हुए हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत

0: और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौवे को यूं बुद्धू बनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ,
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: हाँ, अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल चल।
4: हाँ,
3: हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: हाँ,
3: हैं?
4: ठीक है,
3: चल,
4: ठीक है,
3: चल, चल, चल, चल, चल, चल।
1: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
6: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
7: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे,
0: ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरिपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
0: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन का एक बजने को है। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 1:05 पर होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई

0: सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक व जैविक खेती करेंगे। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा एवं क्लस्टर गठन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कृषि कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि एपेडा एजेंसी से प्रमाणित प्राकृतिक व जैविक खेती कर रहे किसानों को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपेडा द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए उन शहरों की सूची जारी कर दी है जहां पर यह परीक्षा ली जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार अधिकारी के वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 5,511 और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों की यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल ओमैक्स T20 चंडीगढ़ प्रीमियर लीग 2026 के चौथे संस्करण की ट्रॉफी का अनावरण किया। अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और उन्हें अनुशासित, स्वस्थ एवं आत्मविश्वासी नागरिक बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अर्पण फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अग्निरेखा फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है कवि प्रदीप ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अग्नि रेखा फिल्म का गीत। गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने और संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है गीत गाता चल।

अभी आप सुन रहे थे गीत गाता चल फिल्म का गीत। इसे गाया था आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह ने। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, चैताली फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में अभी आपने सुना चैताली फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, अपराध फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

हेमलता का गाया हुआ अभी आपने सुना अखियों के झरोखों से, इस फिल्म से ये गीत। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। और इससे पहले आपने सुना था अपराध फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें थीं। गीतकार थे इंदीवर और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फकीरा फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फ़कीरा फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे इस गीत के रविंद्र जैन। अब आइए आपको सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत। इसे गाया है भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत था मदन मोहन का। सागर फिल्म से आइए अब आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: इसी गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने को है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और इसके बाद 2:15 पर होंगे हिंदी में समाचार। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in boards on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, Direct Benefit Transfer (DBT), Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said that technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor.
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया।
3: जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ।
1: Home Minister Amit Shah has said that welfare of the poor is the topmost priority of the government. In a social media post, Mr. Shah said that in the last 12 years, the government connected crores of citizens to banking facilities, financial security and self-employment opportunities through welfare schemes like the PM Awas, Jan Dhan, Mudra and PM Swanidhi. The minister said that by integrating the country's poor to the economic mainstream through basic infrastructure, social security, and a better standard of living, a strong foundation for a developed India is being built. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. More from our correspondent.
4: The development marks a major milestone in the journey towards achieving equitable and accessible healthcare for all citizens across the nation. Ayushman Bharat scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. West Bengal will become the 36th state and UT to implement the scheme. Under the scheme, more than 36,000 government and private hospitals are empaneled and more than 44 crore Ayushman cards have been issued. till date. Since its launch, the scheme has emerged as a cornerstone of India's healthcare transformation, reducing out-of-pocket expenditure and improving access to quality treatment through a vast network of empaneled public and private hospitals. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the three-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliamentary Association CPA India region in Chandigarh this afternoon. Our correspondent reports, legislators from across the country will attend the CPA conference being hosted by the Haryana Assembly. Lok Sabha Speaker Om Birla and other dignitaries will address the inaugural session. During the three-day conference, deliberations will be held on topics like the role of legislatures in the nation-building Vikasit Bharat 2047, artificial intelligence, and making democratic institutions more effective. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. Khan is now being brought back to Kolkata for further questioning. The arrest comes in the wake of the Khalta Assembly re-election held on the 21st of last month. Following the defeat, Khan disappeared from public view, absent from both his home and party office. Considered close to Trinamool leader Abhishek Banerjee, Jahangir Khan was an influential leader of Khalta in South 24 Parganas. After the change of regime in the state, several villagers had raised allegations of land grab and extortion against Jahangir Khan. Trinamool Congress member of Parliament in the Rajya Sabha Sukhendu Shekhar Roy announced his resignation today. Mr. Roy has stepped down not only from the upper house, but also from the primary membership of the Trinamool Congress. In a press note, Mr. Roy accused the Trinamool Congress of rampant corruption, extreme violence against women, and failures across sectors. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The Delhi High Court today issued notices to the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, over a PIL challenging the newly introduced on-screen marking system for Class 12 board exam answer sheets. A bench of Justices Neena Bansal Krishna and Madhu Jain sought responses from the Centre and CBSE on the plea filed by the National Students' Union of India and SUI. The court has listed the matter for hearing on the 12th of June. The PIL questions the fairness, transparency and reliability of the digital evaluation system adopted by CBSE. It alleged that thousands of students faced problems after the Class 12 results were declared. Meanwhile, the CBSE today said the application window for verification and revaluation for Class 12 examination 2026 remained fully functional from the 2nd to the 7th of this month. During the period, more than 1,60,000 candidates successfully submitted requests for over 3,08,000 answer books. The system remained under continuous monitoring by dedicated cybersecurity teams throughout the operational period to prevent malicious traffic and cyber threats. The National Testing Agency, NTA, has released the Exam City Intimation Slip for the NEET UG 2026 re-examination, scheduled to be held on the 21st of this month. Our correspondent reports that registered candidates can now check their allotted exam city by logging into the official website using their application number and password.
4: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to follow prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. The Israeli military has confirmed executing targeted airstrikes against a major industrial site in southwestern Iran. The military apparatus disclosed that the Israeli Air Force had recently attacked several targets at the petrochemical complex in Mashhad, located in the strategic energy-rich coastal belt of Iran.
5: The latest exchange marks a significant setback for efforts to preserve a ceasefire that had largely held since April. Iran has portrayed its missile launches as a measured response to Israeli military actions in Lebanon, while Israel says its operations are aimed at degrading Iranian military capabilities, preventing further attacks. Diplomatic efforts are now intensifying to prevent the conflict from expanding further. United States President Donald Trump has urged both sides to avoid additional escalation and return to negotiations. Regional mediators are also working to keep communication channels open. Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani held discussions with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi as a part of ongoing efforts to preserve dialogue between Tehran and Washington. The broader negotiations remain complicated by disagreements over maritime access through the Strait of Hormuz and wider regional security arrangements. As military activity continues across multiple fronts, concerns are growing that the latest exchange could trigger a broader regional crisis with implications for energy markets, aviation and international shipping. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Meanwhile, the Indian Embassy in Iran has advised Indian nationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. In a social media post, the embassy also advised the Indian nationals currently present in Iran to exit the country by available means of transport. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio, ushering the country into a special journey of culture, information and broadcasting to echo through generations. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Akashvani brings forth a voice that echoes through generations, carrying the nation's stories, values and aspirations to listeners across the country. More from our correspondent.
6: Post-independence, AIR expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates 591 stations, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's External Services Division broadcast to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the News Services Division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country, in varied terrains, 24/7, in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashvani News, Delhi.
1: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
7: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Sir Firozi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
8: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
7: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
9: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
10: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
7: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
11: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
7: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
12: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
13: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
14: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
15: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
12: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
16: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
7: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
17: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
7: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमको का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, मौसम खूब गर्मी पकड़ रहा है, खूब अच्छी तेज धूप पड़ने लग रही है। एक दो दिन बीच में हवा ठीक चली थी, मौसम कुछ बदलाव में आया था, लेकिन उल्टा फिर ईब तेज गर्मी पड़ने लग रही है। चलो, इसे जो गर्मी पड़ने लग रही है इसके बीच में जो भी काम करने के हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर मानसून आ जाएगी। मानसून आने के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, फिर चौमासा का सीज़न शुरू हो जाएगा, अपनी जो फसलां काम है वो काम दाम अपना शुरू हो जाएगा कुछ ही टाइम के बाद। लेकिन उसके बीच में कुछ इसे काम करने के हैं भाई, उन नाम ईब करा वो ईब करने के हैं। एक तो जो भाई ईंक का नोड़ा पता करने लग रहे हैं वो कर लें इस टाइम पर, कुछ भाइयों ने काम निपटा भी दिया है। उसमें पानी की कमी ना रहने दें, जब पानी की कमी रह जाएगी तो आगे चल के पैदावार पर सीधा सीधा उसका असर जाओगा। ईब जिन भाइयों का कीड़ा लग रहा है तो कीड़े की दवाई का छिड़काव करें भाई, कीड़ा ना रहे, साफ सुथरा खेत हो जा। और निराई गुड़ाई की जब बात आवे है तो उसमें दोहरी जो निराई गुड़ाई है वो ज़रूरत पड़ा करे इस टाइम पर। एक बार जो भी खुदाई है वो करके थोड़ा बहुत कितने घास फूस रह जा तो निरोल खेत करने खातिर एक बार फिर सूखी गुड़ाई कर दें और फिर उसके बाद पानी देना शुरू कर दें। और ईब तो खुराक जो देनी है वो सीधी ऊपर के देश के हैं, जब बड़ी फसल हो जाए फिर तो नाक के हिसाब से देनी पड़े है या कोई और तरीका अपनाना पड़े है। ई बाल में तो कोई छिड़काव है कोई स्प्रे है तो बड़ा आसानी तो उसका, क्योंकि ईंक की फसल छोटी है। बाकी धान की बात इसी है कि भैया ने जो प्योत बो रखी है वो ईब इतनी गर्मी में दिक्कत तो मान जाएगी, लेकिन चलो शाम का टाइम पानी दें, उसमें ठंडा कोई खाद का छिड़काव है वो कर सके हैं, जिंक का स्प्रे है वो कर सके हैं। बाकी यूरिया का तो नहीं सलाह दी जाएगी, क्योंकि यूरिया थोड़ा सा गर्म तासीर का हिसाब तो है वो दिक्कत में आ जाएगा। उसमें गोबर की खाद का जो पहले गिरा गया है उसका असर जिस भाई के खेत में है वो फिर ज़्यादा दिक्कत है, उसके ना भी माने पे उधर थोड़ा बहुत अड़ंगा अड़ंगा जो भी उसमें बनेगा वो साथ के साथ निकालते रहना है। आगे जाकर 20-25 दिन का टाइम जो भी लिया करे उसमें वो प्यो तैयार हो जाएगी और फिर रोपाई का काम शुरू हो जाएगा, इतने उसके बारिश का काम भी शुरू हो जाए। अपनी और जो बाकी तैयारी है वो जब तक कर लें। फिर कुछ सीधी बिजाई का भी काम आवा है, सीधी बिजाई जिस तरह गेहूँ बोया करें इस तरह धान की फसल नाम बो उसका, हाँ जो इसके जाइए लाने वाली जो मशीन नाम का इसका, हाँ जो बीज बोने वाली जो मशीन है उसमें डाल के, और 8-10 किलो बीज बताया जाए इसकी खातिर, और जो हाइब्रिड जो किस्म है उनका तो 6-7 किलो बीज में काम चल जाएगा। तो इस तरह का हिसाब करके 1.5-2 इंच का हिसाब रख लें, उसके हिसाब से बुआरा कर दें। फिर बात आओ है जो दूसरे चाराली फसल है, चाराली फसल हमने ज्वार भी बो रखी है, मक्का भी बो रखा है, लेकिन ई भाल में भी जब देखा जाए तो मक्के की बुआई का टाइम है, क्योंकि मक्का का कोई एक निश्चित सा घना सा टाइम नहीं आया करता किस टाइम पर बोया जाए। जब खेत खाली हो, साल में कई बार बोया जाए तो हम इसने बोस कहाँ। इसमें बात करा कि मक्का हरियाणा के कुछ जिला का मुख्य नाम लिया जाएगा, अम्बाला है, यमुनानगर है, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इनमें ज़्यादातर बोया जाए, खरीफ की अनाज वाली फसल इसकी मान के ज़्यादा बोया जाए। लेकिन बोया उस जगह जगह जीते अच्छा जल निकास हो, जल की निकासी ठीक हो, पानी खड़ा ना रहता हो, जब पानी खड़ा रहता होगा तो फिर उसमें दिक्कत आ सके है। हरियाणा में मक्के की

फायदा करने वाले जो प्रोटीन है ज़्यादा गुणकारी है, स्वादिष्ट है, रोटी बढ़िया इसकी बने हैं, दलिया बना ले तो वो भी बढ़िया बने है, और जो बिक्री खातर जो ये छली हम जिसने कह दिया हाँ वो भी मतलब बेचे हैं तो वो बढ़िया तरीके से बिके हैं। और तो इसमें से केक बनाने, लड्डू बनाने, बिस्कुट बनाने, कुछ बनाना जो भी खाद्य पदार्थ के हैं वो बनाए हैं तो उच्च गुणवत्ता वाले के बढ़िया बने हैं। फिर इसमें किस्म कौन सी हैं जेकर उनका भी करेंगे, लेकिन पहले एक रागनी सुनेंगे जिसके गायक कलाकार रामफल सिंह खोखर कंसाड़िया और उनके साथी।

डके हो हो चोरी डके जीव घात कर धन ल्यावे थे चारू रुख से बाल्यपन में रत्ना करना।

शीश बड़ा जी बजते छह शास्त्र पुराण अठारह छह वेद देख लो पढ़के हर श्री कृष्ण ने देश दिया था मतलब।

रामफल खोखर कंसालिया और उनके साथियों की गाई और या रागनी सुनी इन के बाद में एक रागनी और सुनांगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो जिक्र चल रहा था कि भाई जिन भाइयों ने मक्का बोना है ईब समझ लो टाइम आ गया 25 जून के बाद और 15 जुलाई तक का टाइम इसका माना जा है, तो अगले महीने में भी इसने बोस कहा। उससे पहले कुछ किस्म है वो ध्यान में करवा दें। एक किस्म है HHME के नाम थे, बढ़िया पीले दाने वाली संकर किस्म है, 20-22 क्विंटल एक किले में तो पैदावार दे दे है और 85 के दिन का टाइम दे है पकड़ में। HS2 है किस्म है, सफ़ेद दाना वाली किस्म है या भी 22-23 क्विंटल एक किले में तो पैदावार में दे दे है। अगली किस्म है HM4 के नाम थे, एक मध्यम अवधि वाली संकर किस्म या मानी गई है। इसने यूँ मान के चलना कि भाई 24 क्विंटल तक एक किले में तो पैदावार इसकी मानी जा है, अगर प्रबंधन ठीक ठाक कराया जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा भी यह पैदावार देश के है। अगली किस्म है HM5 के नाम थे, बढ़िया किस्म है और अच्छी ठीक या पैदावार दे दे है। 26 क्विंटल एक किले में तो बताई गई है पैदावार इसकी और झुलसा रोग के प्रति रोगरोधी किस्म भी बताई गई है। अगली किस्म है HM10 के नाम थे, 25-26 क्विंटल एक किले में तो पैदावार मिल जाएगी, बढ़िया किस्म है, इसके बूटे ठीक बने हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, रोगरोधी किस्म है। अगली किस्म है HM11 का नाम थे, लंबी अवधि वाली संकर किस्म है और 3-1 महीने का टाइम लेकर चल रहा है या पकड़ने का टाइम का, और 26-27 क्विंटल एक किले में तो पैदावार बन जाए है, इसकी पैदावार बढ़िया है। अगली किस्म है HQPM1 का नाम थे, 25 क्विंटल इसकी पैदावार बताई गई है, वो 3-1 महीने का टाइम लेगा, उच्च गुणवत्ता वाली संकर किस्म है। अगली किस्म है HQPM4 का नाम थे या बढ़िया किस्म है, संकर प्रजाति की है और न्यूमान के चले 90-92 दिन का टाइम ले ले है और 25-1 क्विंटल एक किलो में पैदावार भी दे दे है। अगली किस्म है HQPM5 का नाम थे, 26-27 क्विंटल इसकी पैदावार है, 3-1 महीने का टाइम लेगी, 2-4 दिन ऊपर भी हो उसके हैं, इसमें ज़्यादा रोग वाली भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये कुछ किस्म थी, इनका ध्यान करें और बाकी तो टाइम का जिक्र चल लिया है 25 जून तक लेक है और 20 जुलाई थी इसका टाइम है बोण का। बाकी बारिश का जो टाइम है जो खेत उससे का भरोसा है, बारिश का भरोसा है तो वह मानसून शुरू होगी तो उस टाइम पर बूझते हैं। बीज का उपचार ज़रूर कर ले, क्योंकि बीज का उपचार कर लेंगे तो आगे फिर बीज नहीं तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। 4 ग्राम थायरम दवाई लेकर 1 किलो बीज का अच्छा भी बनेगा, 8 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। इब आते भी बिजाई कर सके हैं और प्लांटर ते भी कर सके हैं, लेकिन जिस चीज़ ते भी करें उससे पहले खेत ने तैयार कर लें, खेत ने 2-3 बे बा लें, संवार लें, उसमें नमी हो, जो भी कोई उसमें खुराक देनी है जैसे गोबर की खाद देनी है, कोई और कंपोस्ट है, वो पहले ज़मीन में मिला दें और साफ सुथरा खेत हो जाएगा, घास फूस नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी बरबरी हो जाएगी, सुहागा पट्टा गेल लगता रहेगा तो खेत में कुछ हिस्सा लगेगा, साफ सुथरा खेत करे और ई वी बुआरा के लायक से उसमें बोस के हैं। कई सारी बात इसमें आगे भी आऊँगी, एक तो बिरला करने वाली बात आओगी वो भी करना ज़रूरी है और एट्राजीन का बिजाई के तुरंत बाद छिड़काव भी करना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि फिर खरपतवार ज़्यादा ना हो उसकी खतरे छिड़काव पहले जितने करे जाओ वह करने पड़ेंगे और खुरपत फिर आगे इसकी निराई गुडाई करनी है, कुछ मिट्टी भी चढ़ानी है, डोलिया का छाप जो बनाना है तो उसका छाप दें। और जिन भैया ने भाई अपना चारा खातर लेना है तो उन गणी सी क्रियाकरण की जरूरत नहीं है, वो तो अपना जो बुआरा जिस टाइम पर करें उस टाइम पर वो कर ले, कच्चा है उन्हें तो चराना है। पशुओं खातर अलग से आप बोया जाए, थोड़ा सा बीज भी ज़्यादा उसमें पड़ेगा, बीज ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि नज़दीक नज़दीक पौधे हो जाएंगे तो कटाई में ठीक आ जाएंगे और पशु इसने बड़े खुश होकर खा कर बढ़िया यू चारा है, मिला के भी बोसके हैं किसी दूसरी फसल के साथ है और अकेला भी बोसके हैं। और किसान भाइयों ईसा चारा है मकई का तो किसी भी टाइम इसने बोलो ऐसा कोई वो नहीं है इसका खास विशेष टाइम, ये तो दाना का जो जिक्र चल रहा था उसकी बात है। चराई के लिए पशुओं के चारे के लिए साल में कई बार हम इसने बोला हाँ, और उसमें साथ में भाई जो बूटे हैं वो भी लाग जा, पशु उसने भी खुश होकर खाओ क्योंकि मिठास होगा उसके अंदर, जिसमें बूटे में मिठास होगा और वो साथ में गंडासा के कट जाकर वो जो उसने खाने मिलेंगे वो टुकड़े से उसके तो बड़ा खुश होकर खाओगा और पशु इसने दूध भी बदे हैं। चलो और कुछ बात रहेगी तो और भी करेंगे। जिक्र एक रागिनी का हो रहा था, गायक कलाकार एक बार फिर रामफल खोखर कंसाली और उनके साथी।

रामफल खोखर कंसारिया और उनके साथियों की गई उड़रागनी सुन ली और जिक्र कराया था भाई मक्के की जो बिजाई करे हैं भाई जिनका मन बन रहा है उनकी किस्मा का जिक्र कर दिया था, बीज गिरन लगेगा वो भी ध्यान में दुआ दिया है, खेत में बांस मार ले और जिन दाने खातर लेनी है 25 जून तक लेकर 20 जुलाई तक का टाइम दिया गया है उसके बीच में अपने इसका बुआरा करें और पानी निकासी का प्रबंध जरूर कर ले उस खेत में वो जित पानी निकासी का प्रबंध हो। बाकी और बातचीत सांझ ने कृषि जगत कार्यक्रम में बैठेंगे 6:20 पर, उस टाइम पर जिक्र करेंगे। ई टाइम इतना ही मिला था, घड़ी का इशारा हो रहा है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। दलजीत भाई ने इजाजत दे, सारे बण भाइयों ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। तीन बज चुके हैं, अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। शाम 5 बजे विशेष सभा में आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी विशेष सभा आरंभ होती है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार। दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं श्वेसियार खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी, वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक, उनके परिजन और देश के अनेक विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और उसके बाद अलंकरण समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
2: थैंक यू खान साहब। Namaskar and a very good evening to all our dear listeners tuned in to Akashvani for a live commentary of the prestigious and most honored Defence Ambassadors Ceremony 2026.
1: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए
2: एंड द गणतंत्र मंडप Rashtrapati Bhavan packed to its capacity. We've just welcomed our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The audience is rising and now taking their seats. And as they were mentioning, that we extend a very warm and joyous welcome to all our dear listeners tuned into the national broadcaster Akashvani for the very prestigious Defence Ambassadors Ceremony 2026 Phase 1. And a little while ago, the Ganatantra Mandap was buzzing with excitement and effervescence to honour our brave soldiers of our motherland who have sacrificed their all, given their supreme sacrifice. And there are those who have defied death and given a befitting reply to the enemies of the Sanjano, land.
1: Bharat ke maan Raksha Alankaran Samaroh CP Radha Krishnan. Ka ayojan Bharat ke Ganatantra Mandap mein kya ja raha hai? उपराष्ट्रपति श्री सी पी राधा कृष्णन का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी पी राधा कृष्णन अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से नमस्कार करते हुए और अपनी जगह बैठते हुए
2: As we had mentioned, back to its capacity, consisting of the family members, the near and dear ones of the medal awardees, as well as a very poignant and solemn moment for the next of kin of our brave martyrs. It is with a heavy heart that they come here, but yes, it's a moment of pride and honour for them that their beloved has left them with. The Ganatantra Mandap, which is, as I'd mentioned, full and brimming with capacity, and of course glittering to perfection from the main entrance, a red carpet leading right up to the beautiful ornate chair, the majestic chair where our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, shall sit and preside over the proceedings of this grand Defence Investiture Ceremony 2026. And right behind the chair is an imposing 5th century statue of Lord Buddha. Statue is a beauty, poetry in the stone, carved hundreds of years ago but still holding on to its grandeur. And right above that is a burgundy canopy overlooking the entire packed circular hall. And as we were talking about the gallantry awards, there are going to be 51 gallantry awards which shall be presented today, comprising 5 Kirti Chakra, 28 Shaurya Chakra, 12 Veer Chakra, out of which 1 Shaurya Chakra posthumously, 3 Veer Chakra posthumously, and 2 Kirti Chakra posthumously. It is a poignant moment. The Gallantry Awards of India stand as a testimony to the valour, bravado and indomitable spirit of our brave men and women in uniform and our soldiers coming from the tri-services, the Army, the Air Force and the Navy, as well as from the police forces of India in the khaki. Olive, blue, white khaki. The uniform they donned, the vow they took, commitment to the nation to safeguard the frontiers, always and ever. And a grand fanfare now, welcoming our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu.
1: And now, Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, Agaman ki Suchana, Unke Suraksha Guard, Unke Aage Chalte Hue, Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, Is Waqt आ चुकी है राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र दिवस सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का खड़े होकर स्वागत किया और साथ ही माननीय राष्ट्रपति के स्वागत में भी सभी लोग खड़े हो गए। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अब

0: Lilting tunes by the military band from the Mahar Regimental Center, Sagar, Madhya Pradesh. The tunes that swell the chest of every Indian across India and around the world. And today is a day of great honor.
1: Mananiya Rashtrapati Mahodaya, aapki anumati ho to raksha alankaran samaro aarambh kiya jaye.
2: Raksha Sachiv Shri Rajesh Kumar ne karyakram aarambh karne ki anumati li Mananiya Rashtrapati se. Aur ab karyakram ka vidhivat.
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख छत्तीसगढ़ पुलिस
2: इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य पदक के लिए आमंत्रित किया गया है इस वक्त राष्ट्रपति के सामने
3: 16 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहद अभियान आरंभ किया गया नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया अभियान में अनेक नक्सली मारे गए यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट
2: अपने कर्तव्य के प्रति इस असाधारण साहसिक कार्य के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट को माननीय राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करते हैं
3: इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख
2: और अब इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति के सामने इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख तालियों के साथ
3: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला 19वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट
0: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला फ्रॉम द 19th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट
3: 13 जुलाई 2024 को नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला ने घात दस्ता लगाए अभियान के दौरान भारी गोलीबारी ग्रेनेड हमलों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और नजदीक से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया साथियों पर घातक फायर कर रहे तीसरे आतंकी का भी खात्मा किया निर्भीक रण कौशल असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला
0: A brisk, quick walk up to the Honorable President, that is Lieutenant Colonel Nitesh Bharati Shukla, proudly receiving the Medal of Honor Shaurya Chakra for his bravery, courage, and indomitable spirit. And now,
3: Major Aditya Pratap Singh, Sena Medal, the Rajputana Rifles, 44 Assam Rifles.
2: Major Aditya Pratap Singh ko.
3: मेजर आदित्य प्रताप सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में भारी घुसपैठ तथा बड़े हमले की खबर मिलने पर एक ऑपरेशन आरंभ किया 72 घंटे की निगरानी कर आतंकवादियों को ढूंढ निकाला महज 30 मीटर से भयंकर गोलीबारी के बावजूद निर्भीक अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही मोस्ट वॉन्टेड उग्रवादी को मार गिराया अदम्य साहस राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है मेजर आदित्य प्रताप सिंह
2: आदित्य पराक्रम कर्तव्य की परिकाष्ठा से ऊपर निस्वार्थ सेवा और उग्रवादी हमले की निष्काम करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति
3: मेजर आशीष कुमार द पैराशूट रेजिमेंट
0: Major Ashish Kumar from the 7th Battalion of the Parachute Regiment, brusquely boldly, confidently walking forward, taking a quick thump, a salute.
3: 2 नवंबर 2020 को अनंतनाग में आतंकवादियों के संभावित मार्ग पर निगरानी के दौरान मेजर आशीष कुमार ने 2 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की. भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक A++ श्रेणी का कुख्यात आतंकवादी था. असाधारण वीरता और श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है, मेजर आशीष कुमार.
0: Major Ashish Kumar from the Para Regiment, donning the red beret, walking past towards our Honorable President and proudly the medal, Shaurya Chakra, being pinned on his proud chest. A soldier lives for this day.
3: Sipahi GD Sanjay Tiwari, Sipahi GD Fida Hussain Dar, Kendriya Reserve Police Force.
2: CRPF ke GD Sanjay Tiwari aur GD Fida Hussain Dar ko शौर्य चक्र के लिए आमंत्रित किया गया है.
3: 2 नवंबर 2024 को रात्रि 2:45 पर खनियार थाने के एक मोहल्ले से एक विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली. बिना समय गवाए सिपाही जीडी संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया. गोलीबारी शुरू हुई. आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे. बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया. गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सिपाही जीडी संजय तिवारी.
2: सिपाही जीडी संजय तिवारी को, जो कि सीआरपीएफ से है, अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
3: सिपाही जीडी फिदा हुसैन दा.
2: और अब अदम्य साहस के लिए सीआरपीएफ के सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति.
4: सहायक कमांडेंट वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक, 26 असम राइफल्स.
0: असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक फ्रॉम द 26 असम राइफल्स वॉकिंग पास्ट द ऑडियंस एंड नाउ अ क्विक ब्रिस्क.
4: 5 नवंबर 2024 को चिंतावाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में एक टुकड़ी को लक्ष्य घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया गया. अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया. उस समय डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी के करीब जाकर उसे बेहद नजदीकी से ढेर कर दिया और अपने साथियों को बिना किसी नुकसान के साथ बचाकर भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री भी बरामद की. अदम्य साहस, सर्वोच्च नेतृत्व एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देने के लिए डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक.
0: डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक वॉकिंग ब्रिस्कली कॉन्फिडेंटली एंड नाउ फेसिंग आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र.
4: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर.
2: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
4: 6 नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई. जब घर में फंसे एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप कर निडर होकर छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर जानबूझकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने अपने साथी को भी समय पर सूचित किया. परिणाम स्वरूप अपनी सेना द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराया. सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा के सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर.
2: सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
4: सीमैन फर्स्ट क्लास मरीन कमांडो वर्तमान में लीडिंग सीमैन राम गोयल.
0: And now Simon Ram Goyal.
4: ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान आप भारी गोलाबारी के बीच लक्षित घर के घेराबंदी करने के लिए तैनात थे, जहां दो आतंकवादी छिपे हुए थे। आपने अत्यधिक सामरिक परिपक्वता का परिचय दिया और लक्षित घर में छिपे दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए कई बार निडरता से अपनी आड़ तोड़कर सटीक गोलाबारी की। तत्पश्चात आपने अपने साथियों के साथ लक्षित घर में प्रवेश करके निष्प्रभावी आतंकवादियों के शव बरामद किए और युद्ध जैसे सामान भी कब्जे में किए। कर्तव्य से परे सामरिक कौशल, अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता के लिए लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल।
0: वॉकिंग कॉन्फिडेंटली ब्रिस्कली, दिस इज लीडिंग सीमैन राम गोपाल टू रिसीव हिज मेडल ऑफ करेज, मेडल ऑफ गैलेंट्री, शौर्य चक्र। सैल्यूटिंग एंड हेड
4: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन, CRPF।
2: और अब CRPF के सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र के सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है माननीय राष्ट्रपति के सामने। इस वक्त सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
4: जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त दो विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
2: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तृतीय बटालियन CRPF के द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, अदम्य साहस, कर्तव्य प्राणता, ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति ने पदक से।
4: सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20वीं बटालियन CRPF।
0: एंड नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन फ्रॉम द 20 बटालियन CRPF। अ क्विक टर्न एंड अ सैल्यूट।
4: 11 नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावारों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन।
0: असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन बीइंग अवार्डेड द मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाउ पिनिंग द मेडल ऑन टू द प्राउड चेस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन।
3: राइफलमैन भोजराम साहू, तीसरी बटालियन असम राइफल्स।
2: तीन असम राइफल्स के राइफलमैन भोजराम साहू को अगला शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
3: 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
2: तालियों के गड़गड़ाहट के बीच राइफलमैन भोजराम साहू शौर्य चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के सामने।
3: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, उड़ान पायलट।
0: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह एंड नाउ अ फ्लाइंग पायलट ब्रिस्कली वॉकिंग फॉरवर्ड टेकिंग अ क्विक ब्रिस्क टर्न अ सैल्यूट। to Honorable President, Supreme Commander of the Forces.
1: 21 November 2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व सौंपा गया। एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आईं। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अधिक मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह।
0: ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, अ राउंड ऑफ क्लैप्स गोइंग अप इन द एयर, रिसीविंग हिज प्राउड गैलेंट्री अवार्ड, द शौर्य चक्र फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड कोरेज।
1: मेजर भार्गव कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स।
2: कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर भार्गव कलिता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: आपने अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए अपनी बटालियन के साथ तीन सफल ऑपरेशन में भाग लिया जिसमें तीन आतंकी मारे गए एवं चार ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात लगाया जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को मार गिराया गया। उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता तथा अद्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर भार्गव कलिता।
0: मेजर भार्गव कलिता फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र फॉर अनडॉन्टिंग करेज एंड ब्रावाडो।
1: मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह, द पैराशूट रेजिमेंट।
2: और अब 11 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह शौर्य चक्र लेने के लिए।
1: उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह।
2: विशेष वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा।
1: मेजर अंशुल बल्टू, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 32वीं बटालियन Assam Rifles.
0: And now coming marching forward, Major Anshul Baltu from the Jammu and Kashmir Light Infantry.
1: 29 अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया। भीषण मुठभेड़ के बाद तीन सशस्त्र आतंकियों के शव एवं तीन AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर अंशुल बल्टू।
0: द गणतंत्र मंडप एकोइंग अवे द लाउड round of applause for Major Anshul Baltu receiving his Shaurya Chakra, a proud moment for the soldier. Saluting our Honorable President and a quick turn
1: Major
0: back to the
1: Shivkant
0: arena.
1: Major Shivkant Yadav, Parachute Regiment.
2: अब पैराशूट रेजिमेंट के मेजर शिवकांत यादव को शौर्य चक्र।
3: मेजर शिवकांत यादव ने एक आतंक विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की। प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया। अभियान में दो अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए। अद्वितीय वीरता, प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर शिवकांत यादव।
2: तीव्र सामरिक सूझबूझ, विशिष्ट वीरता, आदित्य धैर्य और अदम्य साहस के लिए मेजर शिवकांत यादव को तालियों के गड़गड़ाहट के बीच शौर्य चक्र।
3: सुबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स।
0: And now, Subedar P.H. Moses from the 1st Assam Rifles, proudly marching, slow measured march, a quick salute.
3: 14 May 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई। अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सुबेदार PH मोसेस।
0: सुबेदार PH मोसेस, अ प्राउड सोल्जर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ मां भारती, आवर मदरलैंड इंडिया, receiving his pride medal of honor, saluting and heading back.
3: Major Vivek, the mechanized infantry 42 rashtriya rifles.
2: mechanized infantry 42 rashtriya rifles ke major Vivek ko shaurya chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
3: 15 mai 2025 ko pulwama zile mein ghera aur talashi abhiyan ke dauran major Vivek ki tukdi aatankwadiyon ki goli bari ki chapet mein aa gaya. aapne आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर विवेक।
2: अत्यंत वीरता, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कुशलता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए मेजर विवेक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
3: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई 3 असम राइफल्स।
0: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई फ्रॉम द 3rd असम राइफल्स, रेडी टू रिसीव।
3: 9 जून 2025 को राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ विरोधी अभियान के अग्रणी स्काउट थे। आपने कई आतंकवादियों को घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ते देखा। आपने पहले ही हमले में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई।
0: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई बीइंग अवार्डेड द शौर्य चक्र, डिस्प्लेइंग नर्व्स ऑफ स्टील।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार, पैराशूट रेजिमेंट।
2: 21 पैरा विशेष दल के लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार को शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार ने सीमावर्ती इलाके में एक किले बंद विद्रोही शिविर पर सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और कई उच्च जोखिम वाले टोही अभियानों में भाग लिया, जिससे 9 विद्रोही मारे गए। निडर नेतृत्व और विशिष्ट वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य शिकुमार।
2: उत्कृष्ट व्यवसायिक क्षमता, निडर नेतृत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य शिकुमार को ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया है।
4: कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, पैराशूट रेजिमेंट।
0: Briskly marching forward in measured steps, this is Captain Yogendra Singh Thakur from the 6th Para Regiment.
4: Jammu even Kashmir ke ilake mein Captain Yogendra Singh Thakur apne nigrani daste ke saath tainat the jab unhe lagbhag 300 meter ki duri par kuch agyat vyaktiyon ki harkat dikhai thi. Sangdit vyaktiyon ke bhagne aur anapekshit nuksanon se bachane ke liye ve ghane kohre mein atal rahe. अचानक आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इस स्थिति में वे रेंगते हुए

0: शौर्य चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति के सामने।
1: सुबेदार शमशेर सिंह को श्रीनगर जिले के एक इलाके में 3 उच्च कोटी आतंकवादियों को खोजने एवं मार गिराने के अभियान में स्क्वाड कमांडर के रूप में नामांकित किया गया था। खोजने के गतिविधि के दौरान वे अचानक भीषण गोलाबारी के चपेट में आ गए। युद्ध क्षेत्र में संयम का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत उस स्थान की पहचान की जहां एक आतंकवादी छुपा हुआ था और खुद को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच स्थापित किया। आगामी निकट मुठभेड़ में दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और एक सटीक और घातक हमला करके एक आतंकवादी को मार गिराया। गोलाबारी के बीच अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सुबेदार शमशेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सुबेदार शमशेर सिंह,
0: कर्तव्य के प्रति समर्पण और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए सुबेदार शमशेर सिंह शौर्य चक्र लेते हुए माननीय राष्ट्रपति से।
1: लांस नायक, वर्तमान में नायक राहुल सिंह, पैराशूट रेजिमेंट। श्रीनगर के एक जिले में एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में नायक राहुल सिंह को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अटल साहस, बेमिसाल फील्ड क्राफ्ट एवं संकेतों का पीछा करते हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों का खोज निकाला एवं तुरंत अपने स्क्वाड कमांडर को सूचित किया। आगे बढ़ते समय प्रख्यात खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आतंकी ठिकाने के बारे में अपने दस्ते को सूचित किया और निकटतम आतंकवादी पर सटीक गोलाबारी करके उसको मौके पर ही मार गिराया। उनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही, दृढ़ बहादुरी और असाधारण लड़ाकू क्षमता के लिए नायक राहुल सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायक राहुल सिंह,
2: नायक राहुल सिंह मार्चिंग अहेड फॉर हिज मेडल ऑफ ऑनर द शौर्य चक्र। दिस इज करेज अंडर फायर, अ फाइन डिस्प्ले ऑफ व्हाट आवर सोल्जर्स वाओ टू प्लेज।
1: राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता, 33 असम राइफल्स।
0: 33 असम राइफल्स के राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए
1: 19 सितंबर 2025 को राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता को इम्फाल घाटी में एक बाढ़ राहत अभियान में वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाहन के पिछले हिस्से में 8 और जवान भी बैठे थे। तभी अचानक अज्ञात विद्रोहियों ने घात लगाकर वाहन पर हमला किया। राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता को स्वयं, जांग, छाती, कंधे और बांह पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता,
0: रक्षा अलंकरण से केवल सम्मान प्रदान करने का अवसर नहीं बल्कि ये उन वीर गाथाओं को राष्ट्र के सामने नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
1: लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए।
2: Women empowered are not behind. We have now two women, Lieutenant Commanders Dilna K and Lieutenant Commander Rupai.
1: आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए चयनित किया गया था, जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्विसदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की, जिसमें आपको एकांत, अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के,
2: लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, a big round of applause for the woman soldier from the Indian Navy receiving her Shaurya Chakra proudly.
1: Lieutenant Commander Rupa A.
2: Lieutenant Commander Rupa A. Now in front of our Honorable President, proudly receiving her Medal of Honor, the Shaurya Chakra, daring the West.

0: and being the first Indians to reach Point Nemo.
1: Shatru ka mukabla karte hue veerta ke liye veer chakra. Kal ko Shank Lamba, Regiment of Artillery.
2: Aur ab veer chakra diye jayenge. Veer adhikari pure aatmavishwas aur gaurav ke saath राष्ट्रपति महोदय के समक्ष
1: कल कुशांत लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया, बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया, जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कर्नल कोशांक लांबा।
2: भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार गोलीबारी के बीच असाधारण वीरता, पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करने के लिए कर्नल कोशांक लांबा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, उड़ान पायलट।
0: एंड आवर सेकंड वीर चक्र, ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, फ्लाइंग कैप्टन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स।
1: एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए अपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए तीन स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल, अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू।
0: ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू मार्चिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज मेडल शॉर्ट वीर चक्र फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
1: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र, उड़ान पायलट।
2: और अब उड़ान पायलट मनीष अरोड़ा को वीर चक्र दिया जा रहा है।
1: आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व तो सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अति आधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अद्भुत पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र।
2: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र को वीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को।
1: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, उड़ान पायलट।
0: एंड नाउ ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, ड्रेस्ड इन इंपेकेबल ब्लू यूनिफॉर्म।
1: एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में दो फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया, जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी।
0: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी रिसीविंग हिज वीर चक्र। एंड एज दे से, डू नॉट गो वेयर द पाथ लीड्स, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। एंड गणतंत्र मंडप एकोइंग।
1: कलरा, उड़ान पायलट
0: विद अप्लॉज।
2: और अब ग्रुप कैप्टन कुड़ान कालरा को आमंत्रित किया गया है, जो कि उड़ान पायलट है।
1: आपने एक खतरनाक सैन्य अभियान के अंतर्गत दुश्मन के दो महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए अनएस्कॉर्टेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। शत्रु द्वारा जमीन और आसमान से निरंतर किए जा रहे प्राणघातक हमलों, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा।
2: असाधारण साहस, शौर्य और कृतित्व के लिए ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा, उड़ान पायलट।
0: Wing Commander and now Group Captain Joy Chandra, Flying Pilot from the Indian Air Force.
1: आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा, आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है, ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा।
0: And another loud round of applause for Wing Commander, now Group Captain Joy Chandra, for exceptional gallantry and courage, destroying the designated enemy target, receiving his Veer Chakra.
3: Lieutenant Colonel Sushil Bisht, 1988 Swatantra Medium Battery.
2: Lieutenant Colonel Sushil Bisht, ab Veer Chakra lene ke liye Marathi Rashtrapati ke saath.
3: Lieutenant Colonel Sushil Bisht ne कमान अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में उच्च कोटि के संचालन कौशल का परिचय देते हुए लक्षित आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजीशन व पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट।
2: तालियों के गड़गड़ाहट के बीच असाधारण बहादुरी, अधिक नेतृत्व और अतुल्य साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र लेते हुए माननीय
3: स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार, उड़ान पायलट।
0: Squadron leader, now Wing Commander Sarthak Kumar, flying pilot, proudly marching forward, a quick turn and salute to our Supreme Commander,
3: Squadron leader Sarthak Kumar ne mission planning cell ke pramukh sadasya ke roop mein anek deep strike mission ki yojana aur samanvay mein nirnayak bhumika nibhai va uch jokhim bhare long range stand off strike missionon mein prabhavi yogdan dete hue safaltapurvak sampann kiya और शत्रु की महत्वपूर्ण हवाई संरचना को नष्ट करने में अत्यधिक मदद की। असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, विंग कमांडर सार्थक कुमार।
0: विंग कमांडर सार्थक कुमार फॉर प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन द हाई स्टेक लॉन्ग रेंज ऑफ स्ट्राइक मिशन विद एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड हीरोइज्म, receiving his Veer Chakra.
3: Squadron leader Siddhant Singh, Udaan pilot.
2: Udaan pilot, squadron leader Siddhant Singh ko Veer Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
3: Squadron leader Siddhant Singh ne एक अत्यंत जोखिमपूर्ण वायु मिशन में शत्रु की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली को भेदते हुए कम ऊंचाई पर रडार से बचते हुए प्रवेश कर लक्ष्य पर प्रभावी हमला किया और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई। तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह।
2: असाधारण साहस और शौर्यपूर्ण कार्य के लिए स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह माननीय राष्ट्रपति से पदक ग्रहण करते हुए वीर चक्र आपको दिया गया।
3: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, उड़ान पायलट।
0: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक from the Indian Air Force, now ready to receive his award, Veer Chakra.
3: Squadron Leader Rizwan Malik, operation ke dauran madhya ratri mein ek unescorted strike package ke deputy mission leader ke roop mein udan bhari. Lakshya navintam shaktishali vayu raksha shastra pranali se susajjit tha. Virodhi air space mein nirbadh radar cover ke bavajood खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक।
0: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, echoes of jubilation in the hall, a proud moment for Squadron Leader Rizwan Malik receiving his Veer Chakra for undaunted spirit.
3: Vartaman mein Squadron Leader Arshveer Singh Thakur, Udan Pilot.
2: Mananiya Pradhan Mantri, Uparashtrapati aur Tino Senaon ke Adhyaksh is waqt apne sainikon ki shaurya gatha sunte hue.
3: Flight Lieutenant Arshveer Singh Thakur, ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी। भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था, आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था। विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया। उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए। असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर।
2: शौर्यपूर्ण कार्य के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर माननीय राष्ट्रपति से वीर चक्र लेते हैं।
3: नायब सूबेदार सतीश कुमार, 4th बटालियन द डोगरा रेजिमेंट।
0: एंड नाउ नायब सूबेदार सतीश कुमार फ्रॉम द 4th बटालियन डोगरा रेजिमेंट प्राउडली मार्चिंग फॉरवर्ड।
3: नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोर्टार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोटर प्लेटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोटर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोटर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाई। अडिग संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, नायब सूबेदार सतीश कुमार।
0: Hands going up in a round of applause for Naib Subedar Satish Kumar from the Dogra Regiment and our Honorable President pinning the Veer Chakra Medal of Gallantry on the proud chest of Satish Kumar.
4: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। लांस नायक मिनाची सुंदरम ए, तोपखाना रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स।
2: 29 शौर्य चक्र, 15 वीरता चक्र और
4: लांसनायक मीनाक्षी सुंदरम ए कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांसनायक मीनाक्षी को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांसनायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांसनायक मीनाक्षी सुंदरम ए
2: 7 कीर्ति चक्रों में से पहला कीर्ति चक्र दिया जा रहा है लांसनायक मीनाक्षी सुंदरम को।
4: नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा, पैराशूट रेजिमेंट।
5: नर्व्स ऑफ स्टील आर मेन एंड सोल्जर हैव, दिस इज नायब सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
4: जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायब सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा ने 2 आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी की जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सुबेदार डोलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सुबेदार डोलेश्वर सुब्बा।
5: And a round of applause from our Honorable Prime Minister, members of the Cabinet, dignitaries, for Naib Subedar Doleshwar Subba receiving his Kirti Chakra.
4: Major Ashdeep Singh, Kavachit Corps, 1 Assam Rifles.
2: And now, agla Kirti Chakra.
4: मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह
2: अद्वितीय वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने अपना कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं।
5: Moments like these will be remembered by one and all present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
4: Air Commodore Prashant Balakrishnan Nair एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
5: The proud family with a round of applause proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, flying captain, flying pilot in the Indian Air Force.
4: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
2: और अब विशेष दल 4 पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
4: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नजदीकी मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन राल्डन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन राल्डन ओमा साइलो।
2: तालियों की कौताहट के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन साइलो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन साइलो
1: शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, चौथी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
5: एंड नाउ शौर्य चक्र पोस्थमसली अ वेरी पॉइंटेंट मोमेंट द फर्स्ट चक्र शौर्य चक्र गोइंग टू लांस दफादार बलदेव चंद फ्रॉम द आमट कौर कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज वाइफ एंड मदर।
1: लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी।
5: ऑनरेबल प्रेसिडेंट वॉकिंग टुवर्ड्स the martyr's wife and mother to present the Shaurya Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling, but our martyr leaves the family, the near and dear ones, with pride and honor.
1: Ab Veer Chakra Marnoparant Pradan kiye jayenge। उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत।
2: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की परिवार के सदस्य मरणोपरांत वीर चक्र लेने के लिए इस वक्त माननीय राष्ट्रपति के सामने।
1: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चेंगखम सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा पार से मोर्टर द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उपनिरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चेंगखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया। मोर्टर का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद आप दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिससे शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा।
2: और अब माननीय राष्ट्रपति अपने आसन से नीचे उतरते हुए ये मरणोपरांत पुरस्कार देते हुए
1: दीपक चिंगाखम की पूज्य माता श्रीमती चिंगाखम एवं मन देवी एवं पूज्य पिता श्री चिंगाखम बोबिन बिहारी सिंह।
2: ये कैसा अफसर है, इतना भावुक अफसर होता है जब शहीद सैनिकों के परिजन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण करते हैं और पूरा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है।

0: राइफलमैन सुनील कुमार, चौथी बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मरणोपरांत।
1: The next of the kin of rifleman Sunil Kumar posthumously coming forward to receive the Medal of Gallantry Veer Chakra, a poignant moment when the entire nation stands beside the family of our great martyr, together sharing their
0: rifleman Sunil Kumar
1: and joy.
0: Seema Suraksha Bal ki 7th Battalion ke saath Sena ke samanvay tukdi ke roop mein Jammu kshetra ki ek seema chauki par tainat the. 7 May 2025 सीमापार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल।
1: The parents of rifleman Sunil Kumar awarding them the Veer Chakra posthumously. To the proud family saluting the mother for giving birth to such a brave heart.
0: अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
2: और अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर के परिवार को। द महार रेजिमेंट एक राष्ट्रीय राइफल्स के है सिपाही।
0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकेर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री ओम बिरला ने कहा कि आपसी संवाद और सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प की प्राप्ति संभव है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश ने कहा कि सीधे लाभ हस्तांतरण से सामाजिक कल्याण को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा का लक्ष्य प्रदेश को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनाना है। और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में निर्मित आधुनिक अनुभूत शौचालय का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है।
4: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
4: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के

0: संसाधन आखिरी व्यक्ति
1: इस मौके पर मंच पर उनके साथ राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिठा और हरियाणा के संसदीय मामलों के मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री ओम बिरला ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य आपसी संवाद और सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के ऐतिहासिक संकल्प की प्राप्ति है।
2: आज जब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो बड़े ऐतिहासिक लक्ष्य और संकल्प के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इन दो दिन की चर्चा संवाद से, साझे प्रयासों से, साझी कार्य योजना से और भविष्य के अंदर अपने अपने राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपने राज्य के विकसित राज्य के संकल्प के साथ विकसित भारत के संकल्प के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए यहाँ और सामूहिक संकल्प के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हर संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कालखंड के अंदर समय समय पर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से निर्णय प्रयास करते हुए देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा तय की है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य और देश के विकास की संकल्पनाओं को पूरा करना हमारा दायित्व है।
2: भारत का लोकतंत्र जहाँ पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक हमने इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन किए, नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, कानून बनाए और समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने का काम किया। लेकिन अब बड़ा संकल्प है और बड़े संकल्प के साथ हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज का सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व करते हैं और इसीलिए जहाँ विधानसभा में नीतियां बनाना, कानून बनाना, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम समय समय पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं।
1: लोकसभा अध्यक्ष से पहले राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश ओम बिरला ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने देश को विकसित बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
3: भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, विशेष रूप से आधार, यूपीए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली, अब एक्लूसिव शासन के स्केलेबल मॉडल पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और दुनिया उसका उल्लेख कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसके अतिरिक्त भारत ने अन्य क्षेत्रों में खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और अर्बनाइजेशन जैसी चुनौतियों पर लगातार प्रयास हो रहे हैं कि कैसे हम इसमें अपनी अलग पहचान बना सके।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विकास के 6 स्तंभों का जिक्र किया और समेकित विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य ही विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। हरियाणा में विकास के लक्ष्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,
4: क्षेत्रीय विकास और स्थानीय संशासन हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2047 हरियाणा को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था तथा 40 लाख रुपए से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाना है। हमें सभी विभागों को ये स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य निर्धारित करें ताकि विकास योजनाबद्ध हो, परिणाम स्पष्ट हो और कार्य समय पर हो, ऐसी व्यवस्था हमने की है।
1: उद्घाटन सत्र के दौरान हरियाणा के इतिहास पर एक खास दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। 3 दिन तक चलने वाली इस कार्यक्रम में पूरे भारत से आए विधायक और पीठासीन अधिकारी विकसित भारत 2047 के तहत राष्ट्र निर्माण में विधायकों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा असरदार बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आश नगर परिषद पलवल ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में निर्मित आधुनिक अनुभूत शौचालय का उद्घाटन किया। यह भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त वित्तीय सहयोग से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह आधुनिक सार्वजनिक शौचालय परिसर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित, समावेशी और सुलभ सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अनुभूत शौचालय परिसर में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा माताओं और छोटे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेबी केयर रूम तथा साफ सफाई और रखरखाव सामग्री के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टोर रूम भी बनाया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया ने आज फरीदाबाद में महिलाओं से संबंधित मामलों की जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान जिले भर से आए 34 मामलों में से 4 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 3 मामलों में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता कराया गया। मीडिया से बातचीत में रेणु भाटिया ने बताया कि कुछ मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजा गया है, जबकि कई मामलों में अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में मुख्य रूप से लिव इन रिलेशनशिप, वैवाहिक विवाद, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों तथा पारिवारिक कलह से जुड़े मामले सामने आए। बल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने आज आर्य नगर में 13 गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से लगभग 65 लाख रुपए की लागत से आरएमसी गलियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। विधायक ने बताया कि आर्य नगर में सीवर और पेयजल लाइन बिछाने पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नूह जिले में आयुष विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज जिले के मरोड़ा, उजीना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका, पिनगवा एवं पुनहाना स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को योग प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान योग के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर यशवीर गहलावत ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आमजन को कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशिक्षित करना तथा योग को जन जन तक पहुंचाना है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
5: आज तो पार्टी चाहिए,
6: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
8: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: खो गया इंतजाम।
10: किसका?
9: गुड्डी की फीस का।
10: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
11: RBI कहता है
12: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
13: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम सुनन दियां सारे बण बाईयां ने दलजीत बाई की राम राम। किसान भाइयों, हमें परंपरागत खेती करा हाँ, उसमें हमारे पहले जो बड़े बूढ़े जो करते चाल रहे थे, कुछ भाई तो उससे से आपते इबन्यू बोए जा कद ईख बोले हैं, पर क्यों बोते हैं? चलो पहले अड़े तो न्यू था कि चने भी बो लिया कर दे और भी दूसरा ग्वार गुर भी बो लिया कर दे, लेकिन ईब दो ही तीन फसल ध्यान में रहे हमारे। न्यू मान लिया कि हर साल नहीं तो फिर दूसरे तीसरे साल का हिसाब न्यू मान लिया हाँ कि वो ही फसल दोबारा फिर उल्टी फिर गिनती में आ जाए। बात यह है कि जब तक हम फसल चक्कर नहीं अपनाओगे, सारी फसल बदल बदल के नहीं बोएंगे, हम अलग अलग फसलों का चुनाव नहीं करेंगे, तो हमारी ज़मीन उतना मुनाफा हमने नहीं देगी जितना उसने देना चाहिए। देखो इसमें लगता कुछ नहीं, बात करेंगे फसल चक्कर की। फसल चक्कर में हमारा लाग के है, ईब का ज्वार बो रखी है, अगली बार जी कोई और दूसरी फसल बूझा उसमें ग्वार बूझा, कदे बरसम बूझेगी, कदे ईख का नंबर आ जाएगा, कदे गेहूँ बूझेगा, 5-7 साल पाछा जो खेत है धान का तो कदे धान हो जाएगा उसमें, कदे कपास का मौका लग जाएगा, कदे उसमें हरड़ बूझेगी। इसमें क्या है कि बदल बदल कर जाम बोएंगे तो हमने इसमें जो खुराक देनी है वह कम देनी पड़ेगी, कम खुराक में काम चल जाएगा और बचत हमारे कौन सी रहा है, यह तो बचत रहा है कि खर्चा कम करेगा। देखो भाव जो रहेगा वो तो रहना ही है और निकलने का भी एक थोड़ा बहुत ईसा होया करे कि भाई कुछ लकड़ा में फर्क पड़ गया है, बाकी न्यू भी नहीं है कि भाई कदे 40 मण हुए हैं तो अगली बाजी 80 मण हो जाएंगे, ना ईब का 40 मण हुए तो अगली बाजी 50 मण हो जाएंगे, बस इतना ही उसके है। तो हम तो इस बात का ध्यान करें कि भाई फसल चक्कर अपना लिया और इसके साथ साथ वह फसल बोलिया जो कर मान लिया ग्वार बो दिया, ग्वार का पत्ता पड़ गया तो उसमें ज्यादा खाद गेण की जरूरत नहीं है, अगले साल वो काम हो उसके चला देगा। सरसों बो दी, सरसों का पत्ता पड़ गया, जमीन साफ सुथरी होगी, उसमें खरपतवार भी कम होंगे। तो ये इस तरह के तरीके अपना कर जब हम अपनी जमीन की सेहत ने सुधारा। बात प्राकृतिक खेती की भी आव है, इसके जानकार आऊँ हाँ, जब भी बात करा हाँ, प्राकृतिक खेती में भी एक के बात है और कोई बड़ा सा इसका काम नहीं है, यो फार्मूला है कि भाई जो भी खेत का सौदा है कोई भी अवशेष है वो खेत में गड़ा दिए जा, बस उस तो ज़्यादा करना भी कुछ नहीं, खेत का कोई भी अवशेष बाहर नहीं काटना है, वो खेत में गड़ा देना है, वो गड़ के उसका खाद बनेगा, बढ़िया ज़मीन की तासीर बनेगी, बढ़िया उसमें फिर अन्न पैदा होगा, बढ़िया सब्जी पैदा होगी, बढ़िया उसमें कोई भी चीज़ बोआ वो होगी। फिर बात आओ है जब जिक्र करते ना कोई भी चीज़ बोआ, कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जो सारे क्षेत्र में नहीं होती, ये बात हल्दी की करा, हल्दी भी सारे भाई नहीं बोंदे, अदरक भी नहीं बोंदे, मूंगफली भी नहीं बोंदे सारे। देखो न्यू तो है नहीं कि मूंगफली अपने पूरे प्रदेश में बोई जा है, कुछ एक क्षेत्र है उसमें बोई जा है, उसके हिसाब की जमीन उसके है, उसके हिसाब का पानी उसके है, उसके हिसाब का अपना मन उसके है बोने वाला का। तो एक बातचीत अपने दो रहे वो भी सुनेंगे मौका लगेगा। तो फिर उसने पहले बातचीत भी सुनेंगे क्योंकि ये कुछ इस तरह की फसल हैं जो हर क्षेत्र में नहीं होती, कुछ भाइयों की जमीन उसके हिसाब की है वो उसमें बोले हैं, लेकिन इसका तरीका भी कुछ अलग है। वो तरीका क्या है कि भाई वो या तो कितने जानकारी लो उन्हें पता लग गई चीज़ का, या फिर वो इस हिसाब से खेती करो कि भाई अगली फसल वो ले सकें। तो बहुत सारे क्षेत्र से हैं, अपने प्रदेश की बात कर लिया, उसमें भाई बदल बदल गई फसल ले हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, उस पथरीला भी एक क्षेत्र है कुछ जगह में, कुछ बालू रेत के टीले हैं। इब उस जगह पर उसका हो कपास बो दें और कपास उड़े बोए हैं उन्हें लेट बोई तो फिर वो हवा चाल के उन टीलिया में नीचे वो कपास दब जाए मिट्टी के तले, तो ये भी बात समस्या आ जाए है। लेकिन जो समतल जो एरिया है ना जित उपजाऊ मिट्टी है, करड़ी मिट्टी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, तो उस जगह
कुछ ईसीए फसल हुए हैं जो बैनू लग आके ज़्यादा पानी हो जाएगा वो भी उठ जाएगा, या फिर सामान्य से जो अपनी खेती है उसके हिसाब की वो कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जित पहले अदरक हल्दी की खेती नहीं करी जा करती, लेकिन ये भी करे हैं, लाग लिए हैं करण उस जगह, और वो हो भी जा है। वो न्यू नहीं है अकबर उन्हें बोई और नहीं हुई क्योंकि वो मिट्टी उस हिसाब की होगी, उन्हें पानी का उसका हिसाब बना लिया। दूसरा एक और बात ध्यान में दवा दें भैया के, जिनके पानी कमजोर थे, कमजोर पानी थे तो उन अपना कोई और जाप्ता कराया है, टेबल ऊपर नीचे लगाए हैं, नहर के पानी के खाल काटे हैं उसकी जगह के, या फिर कुछ नहर के पानी के गड्ढे बनाए हैं, कच्चे गड्ढे बना दिए, कुछ पानी नीचे जाओगा उससे भी असर उस चीज़ का हो है, या फिर गड्ढे बड़े बना के और उस जगह पे कोई ईसा यंत्र लगा के मोटर माटर लगा के तो उस पानी ने वो पहुँचान लग गए। यानी कि जित मीठा पानी नहीं जा सका था, ये फसल नहीं हो सके थी, उस जगह पर वो पानी पहुँचान लग रही है भाई। वो थोड़ी सी मेहनत तो न करनी पड़ी है, खर्चा तो थोड़ा सा होया है उनका, ऐसी बात नहीं है। चलो फिर भी न्यूका करें अगर भाई कितने मुनाफा ज़्यादा होता उन्हें तो थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेना चाहिए। फिर बात आओ है कि खर्च के ऊपर बात आई है, तो पाइपलाइन बहुत सारे भाई दबान लाग रहे हैं, ई भी मौका भी है। यू मौका इसे हिसाब का है कि किसी भाई के खेत में मान ले दबानी पड़ गई तो उसमें दिक्कत नहीं है, उसकी कोई फसल नहीं खड़ी है, उसके मुँह के ये तो ट्रैक्टर का खुदाई करे हैं, वो मशीन सी आ रही है घुमा घुमा कर उसमें तो माटी काट दे हैं, लेकिन पहले तो भाई हाथे खुदाई कराया करते, उसमें तो ये एक के दिन में घने क्षेत्र में पाइपलाइन बेचा है। तो जो नई तकनीक आई है ना उनका सारा लेकर भाई ने बहुत सारा जो कृषि का काम है वो बड़ा एक सुगम बना लिया है, आसान बना लिया है। पहले गोड़ी भी लाया करते ने, चलो बहुत पुराने टाइम की बात करा तो जो हमारे बड़े थे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो वो भी कराया करते, चाहे सुहागत है माटी दाब के सरका कर देनी, छोटी छोटी बैलों के साथ जो घोड़ी थी वह भी ले रहे थे, लेकिन बाद में ट्रैक्टर भी आ गए। लेकिन आज जब देखा जाने तो कुछ भी नहीं, एक बार अपना एक वह कंप्यूटर वाली घोड़ी है ट्रैक्टर के पाछे बंद है, उसके चक्कर कटवाओ हैं, वह कत्ती एक सा कर दे है, जो ट्रैक्टर तो वैसे लगाया कर देने उसमें तो बल्कि इतना वो नहीं आया करता, लेकिन यह तो एक ऐसा यंत्र आ गया कि इसने तो बहुत बढ़िया काम हो जाए है। तो नई तकनीक का सहारा लें और जो कृषि है अपनी उसमें मुनाफा खूब लें। तो बातचीत का जिक्र चला था, बातचीत भी सुनवाओगे, लेकिन आज सोमवार का दिन है, साप्ताहिक समाचार समीक्षा है, तो वो सुन लें पहले, फिर लौटेंगे वापिस कृषि जगत कार्यक्रम में।

प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका सुकीर्ति। नमस्कार। हरियाणा देश के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों में से एक बनकर उभर रहा है। गत 12 वर्षों में राज्य ने सड़क, रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। राज्य में 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2484 किलोमीटर है, जबकि राज्य राजमार्गों की लंबाई लगभग 1801 किलोमीटर है। इन मार्गों ने हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, नुह और पलवल जिलों से होकर गुजरता है। यह देश के सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसने पश्चिमी भारत की ओर संपर्क को और मजबूत किया है। गुरुग्राम रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों शहरों के बीच यात्रा समय को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। वहीं पानीपत डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण परिवहन गलियारा है, जो करनाल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जैसे जिलों को बेहतर संपर्क प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसे उत्तर दक्षिण लाइफलाइन भी कहा जाता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह हरियाणा के कुंडली, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला को दिल्ली तथा पंजाब से जोड़ता है।

इस मार्ग का 6 लेन तक चौड़ीकरण पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 9 हरियाणा की पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी की रीढ़ माना जाता है। यह दिल्ली हरियाणा सीमा स्थित बहादुरगढ़ से शुरू होकर रोहतक, हिसार और सिरसा होते हुए पंजाब एवं राजस्थान की ओर जाता है। 4 लेन वाला यह राजमार्ग राज्य के कृषि और औद्योगिक परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई 670 किलोमीटर है। यह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। इसका लगभग 158 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में स्थित है। अब दिल्ली से कटरा की यात्रा लगभग 6 घंटे में पूरी की जा सकती है। हरियाणा सरकार ग्रामीण संपर्क मार्गों को भी मजबूत कर रही है। राज्य में 12 फीट चौड़ी सभी सड़कों को 18 फीट चौड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 3,240 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कें 12 फीट चौड़ी हैं। इनमें से 1,696 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य जारी है, जबकि शेष 1,544 किलोमीटर सड़कों पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। हरियाणा स्वच्छ और हरित परिवहन के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच संचालित की जा रही है। इसके लिए जींद में हाइड्रोजन उत्पादन एवं रिफ्यूलिंग संयंत्र भी स्थापित किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल है और कार्बन उत्सर्जन के स्थान पर केवल जल वाष्प उत्सर्जित करती है। ट्रेन की डिजाइन गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि पायलट परियोजना के तहत इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की नियंत्रित गति से संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे पर लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत आई है। हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और लेआउट प्लान का अध्ययन किया जा रहा है। सेक्टर 36A के निकट सीही गांव में प्रस्तावित मेट्रो डिपो के लिए भूमि को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की संभावनाओं का तकनीकी अध्ययन राइट्स द्वारा किया जा रहा है। वहीं बहादुरगढ़ असौधा मार्ग पर इंटरचेंज स्टेशन विकसित करने की योजना के तहत नया सर्वेक्षण शुरू किया गया है। मेट्रो सेवाओं की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच 1,74,00,000 अधिक यात्रियों ने मेट्रो का उपयोग किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.55% अधिक है। किराया आय में 12.64% तथा गैर किराया आय में 108% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम फरीदाबाद नमो भारत कॉरिडोर की अलाइनमेंट को मंजूरी मिल चुकी है और इसकी DPR तैयार की जा रही है। दिल्ली कुंडली मेट्रो विस्तार और दिल्ली पानीपत करनाल RRTS परियोजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं। गुरुग्राम में भोंडसी से रेलवे स्टेशन तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर को भी मंजूरी दी जा चुकी है। हरियाणा में लगभग 1,701 किलोमीटर लंबा ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क है और राज्य का संपूर्ण रेल नेटवर्क 100% विद्युतीकृत हो चुका है। यह नेटवर्क मुख्य रूप से उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत संचालित होता है। राज्य में 215 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं। पलवल सोनीपत नई डबल रेल लाइन परियोजना जो सोहना, मानेसर और खरखौदा से होकर गुजरेगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतीय रेलवे के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित करेगी। इसके अलावा करनाल, यमुनानगर तथा जींद हांसी रेल लाइन परियोजनाओं पर भी कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच नई 194 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की है। लगभग 5,983 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह रेल लाइन हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों से होकर गुजरेगी। परियोजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा एक प्रमुख पुल और 28 अन्य पुलों का निर्माण होगा। परियोजना को 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश कार्य रेलवे की मौजूदा भूमि पर किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 43 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। हरियाणा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। इन स्टेशनों को आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

0: जान कर लें और डॉक्टर साहब जो बताओगे एक बार उसने सुन लें कि भाई के तरीका है, किस तरह बोई जाए, क्यों कर इसकी खेती करी जाए, उन्नत किस्में कौन सी हैं और कास्ते किस तरीके से करी जाएगी, सुने
1: भाई। बातचीत करेंगे मूंगफली की किस्में और कास्त के बारे में। इसकी जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अशोक कुमार डहिनवाल जी। आप हैं कार्यरत क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल रेवाड़ी में। डॉक्टर साहब स्वागत आपका।
2: धन्यवाद सुरेंद्र सर जी।
1: तो डॉक्टर साहब देखो, मूंगफली की जहाँ तक बात आवे है किस्मों की
2: जी,
1: इसमें पहले तो ये बताओ जो उन्नत किस्म है वो कौन सी है।
2: सर जो मूंगफली है वो हमारे देश में मुख्यतः जो तिलहन फसलें हैं उनमें से एक है। तो हमारे इधर जो हरियाणा का क्षेत्रफल क्षेत्र है वो राजस्थान से जितने भी नज़दीक एरिया है उन सभी की किस्में इसमें सम्मिलित होती है। मेनली इसमें तीन तरह की किस्में होती है। एक तो होती है स्पेनिश, जिसको हम बोलते हैं, जिसके जो मेन जो तना होता है उस पर फ्लावर आते हैं। दूसरी होती है वर्जीनिया टाइप, जिसमें तने के साथ साथ शाखाओं पे भी फूल निकलते हैं। तो जो जिस पे तने पे फूल निकलते हैं उसकी किस्में हैं TG37A।
1: अच्छा।
2: ये बॉम्बे की एक वैरायटी है। इसमें जो पैदावार आती है वो 20 क्विंटल के लगभग आती है।
1: 20 क्विंटल एक किलो में?
2: नहीं जी, हेक्टेयर में।
1: एक हेक्टेयर में
2: 8 क्विंटल एक किले की लगभग।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो इसमें जो एक वो आती है छिलाई क्षमता, सेलिंग परसेंटेज बोलते हैं, वो लगभग इसमें 68% होती है। तो जो अपने पास पोड आएंगे, वो जो कर्नल आएंगे, जो पोड आती है वो इसमें इसको मल्टीप्लाई होकर लगभग अपने पास 20 क्विंटल के लगभग हेक्टेयर की आती है।
1: अच्छा।
2: तो उसके बाद इसमें ऑयल कंटेंट है, जो तेल की मात्रा होती है वो 48% के लगभग होती है। उसमें जो ये मैच्योर हो जाती है वो लगभग 120 दिन में हो जाती है। मूँगफली की जो सारी किस्में हैं लगभग इनमें जो तेल की मात्रा है वो 45 से लेके 55% तक होती है। अभी कुछ समय पहले ही 2023 में 2024 में 5-6 किस्में बहुत अच्छी आई है। जैसे कि अभी जो आई है वो आई है उदयपुर से, एक नई किस्म आई है वो है प्रताप मूंगफली 1, प्रताप मूंगफली 2, और पिछले साल ही आई प्रताप मूंगफली 3, जिसकी पैदावार लगभग 33 क्विंटल के लगभग है हेक्टेयर की।
1: 33 क्विंटल पर हेक्टेयर?
2: पर हेक्टेयर लगभग 12 से 12.5 क्विंटल
1: तो
2: एक किले की।
1: या तो डॉक्टर साहब इतने डोडी पैदावार दे लगभग
2: सभी में ऐसा ही है सर। ये तो अभी तो वो जिसमें तने में फूल आते हैं वो किस्में हैं।
1: अच्छा।
2: दूसरे जिसमें तने के साथ साथ शाखा में भी फूल आते हैं उसको हम वर्जीनिया टाइप बोलते हैं। हमारे जो क्षेत्र है राजस्थान गुजरात इन सब इलाकों में लगभग जो वर्जीनिया टाइप की होती है, जो फैलने वाली होती है, गुच्छे में जो लगती है, वो किस्में यहाँ पे लगाते हैं। उन किस्मों में भी जो हमारे राजस्थान के गंगानगर का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, गंगानगर, श्री गंगानगर के नाम से, उसकी 3-4 किस्में हैं। जैसे HNG 10HNG, 69HNG, 123, ये तीनों किस्में फैलने वाली है और गुच्छे वाली किस्में हैं।
1: अच्छा।
2: तो इनमें भी लगभग सारों में 28 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर इनकी पैदावार है, जो कि एक किले में लगभग आपकी 10 क्विंटल से लेके 12 क्विंटल तक रहती है।
1: इसमें डॉक्टर साहब देखो, देखा जाए तो 10 क्विंटल 12 क्विंटल एक किले के हिसाब से जब पैदावार मिल जाए ना मूँगफली की
2: जी,
1: तो बहुत है। और जैसे पहले जो किस्म होया कर दी वो तो बहुत कम पैदावार दिया कर दी, लेकिन इनमें जो क्वालिटी है, जो तेल की मात्रा है, क्या उनमें उनके बराबर है?
2: सर पहले जो किस्में थी उनमें लगभग हम 6 से 7 क्विंटल एक किले में लेते थे। अब जो किस्में आई है उनमें हम लगभग एवरेज तो वैसे 10 का है, 8 से 12 तक रेंज है, 12 क्विंटल तक भी लेते हैं। तो उसमें जो तेल की मात्रा है वो 53 तक चली गई है, 53% तक चली गई है।
1: तो फिर अच्छी बात है, ये तो
2: बहुत अच्छी है सर। और इसमें दो चीज़ें और इम्प्रूव करी है, बहुत उसमें विकसित करी गई है। एक तो आयरन कंटेंट जो लो तत्व होता है वो, और एक जिंक कंटेंट। इन जो दो किस्में मैंने अभी बताई है, एक दुर्गापुरा है जयपुर में, वहाँ की 3-4 किस्में हैं, राजमूंगफली के नाम से आती सारी। किसान भाई इन सब जो किस्में हैं दुर्गापुरा से, जयपुर से, गंगानगर से, आसपास जो इलाके उनसे ले सकते हैं। राजमूंगफली 2 है, राजमूंगफली 3 है, अभी पिछले साल आई राजमूंगफली 5 और 6, उसमें उन दोनों किस्मों में ये जो लो तत्व है और जो जिंक तत्व है इनकी मात्रा, लो तत्व की तो 78 PPM से ज़्यादा है और जिंक इसके 4.5% से भी ज़्यादा है।
1: इसका भी डॉक्टर साहब जो अपने ये सेंटर हैं,
2: हाँ जी,
1: जो अनुसंधान सेंटर हैं, क्या इन पर भी मिल जाता है?
2: सर अनुसंधान केंद्र पे हमारे मूंगफली में, हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा, उसमें अभी इस पिछले साल 2023 में अगस्त में एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारी नई किस्म है GNH 804, ग्राउंडनट हरियाणा 804 के नाम से।
1: अच्छा।
2: उसको आइडेंटिफाई हो गया, मतलब वो अब आगे गई है, वो रिलीज होने के, इस साल रिलीज हो जाएगी। तो अगले साल से उस किस्म का बीज हम किसान भाई जितने भी हैं वो बावल सेंटर रेवाड़ी के अंदर से भी ले सकते हैं इस किस्म का।
1: वो तो ले सकते हैं, जो ये पहले आपने किस्म बताई।

0: ये अच्छी जो पैदावार दें, लगभग 32-33 क्विंटल के
1: जी
0: आसपास एक हेक्टेयर से मिल जाती है, क्या वो किस्में अपने सेंटरों पे मिलती
1: सर
0: हैं या
1: ये
0: ये बाहर से ही लेनी
1: नहीं,
0: पड़ती
1: ये
0: हैं?
1: बाहर से लेनी पड़ेंगी सर। गुजरात की कुछ वैरायटी है, उन कुछ किस्में, और राजस्थान के बाहर से लेनी पड़ेगी। इस
0: अच्छा।
1: साल हमने बाहर से सीड मंगाया है, FLD करते हैं, जैसे ICAR हमें देता है FLD करने के लिए, तो FLD के लिए तरह उसको प्रथम पंक्ति जो प्रदर्शन होता है उसके लिए हमने इस साल 30 क्विंटल बीज लिया है, तो उसका बीज हम किसान भाइयों को अगले साल से दे सकते हैं उन्हीं वरायटियों का।
0: वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कहाँ संपर्क करें हमारे जो किसान भाई हैं? मुख्य समस्या तो बात यह आ जाए है कि यहाँ किस्म तो बता दी जहाँ है, लेकिन वो किस्म बार जो हम लेना चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाती, दिक्कत
1: सर
0: ये है।
1: इसी का बता रहा हूँ मैं। इस
0: हाँ।
1: साल से जो अगले सीजन आएगा, अगला जो वर्ष आएगा, उस साल से बाउल जो सेंटर है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जो तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, उसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बाउल से ले सकते हैं सर।
0: अच्छा,
1: हाँ जी सर।
0: तो उसमें डॉक्टर साहब एक एकड़ के लिए,
1: हाँ जी
0: हम बात एकड़ की कर रहे हैं, तो उसमें एक एकड़ के लिए कौन सी किस्म का कितना बीज लेना उचित रहे?
1: सर, जितनी भी किस्में मैंने अभी बनाई बताई है, इनमें लगभग सभी में 35 किलो से 40 किलो बीज एक किले के लिए काफ़ी रहेगा। जो भी उन्नत बीज है किसान भाई उनको बीज उपचार जरूर करें। ये जो मैंने किस्म बताई, राज मूंगफली करके, HNG है, ये जो जसारी किस्में है, ये सारी किस्में का बीज बाउल सेंटर से नेक्स्ट अगले साल से मिलने स्टार्ट हो जाएगा, और किसान भाई बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार में तीन चार चीज़ें हैं सर, जैसे टैबुकेनाजोल से करें, ये दवाई का नाम है, इससे करें तो 1.5 ग्राम एक किलो बीज का, अगर कार्बेंडाजिम से करें तो 2 ग्राम एक किलो बीज का, और अभी जो तीन चार एक्सपेरिमेंट हमारे वहाँ पे शोध हुए हैं तो उसमें हमें पता चला कि जो कैप्टान है एक दवाई, उससे अगर करते तो और बढ़िया रिजल्ट आते। इसमें जो तना गलन है, इसमें जो कोलर रोट है, वो सारी बीमारी उससे थोड़ी कम आती है।
0: उसमें फिर कैप्टन की मात्रा बीज के
1: तीन
0: हिसाब से कितनी
1: तीन
0: है?
1: ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से सर।
0: अच्छा, मान लो 35 या 40 किलो बीज
1: हाँ,
0: बताया आपने,
1: तो उसमें लगभग 100 से 120 ग्राम का,
0: 120 ग्राम के
1: हाँ एक
0: आसपास
1: सौ बीस ग्राम के
0: हमें वो
1: आसपास
0: लेनी पड़ेगी
1: यस।
0: दवाई,
1: हाँ जी,
0: और फिर उसको फिर बीज का उपचार की विधि क्या रहेगी?
1: बीज के उपचार के सर, जब भी हम बीज, जो मूंगफली है वो पोड में आती है, तो पहले जब भी हमें बीज तैयार करना हो तो 15 दिन पहले मूंगफली को छील ले अच्छे से, और उसको उसके अनुसार ही, कैप्टान कर रहे हो तो 3 ग्राम एक किलो बीज के अनुसार उसको बिजाई से पहले उपचार करना है।
0: अच्छा।
1: उसके साथ एक इसमें बीमारी आती है, सफ़ेद जो लट होती है, वो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र के लिए खतरनाक बीमारी, वो इंसेक्ट पेस्ट है, तो उसके लिए क्लोरोपायरीफोस जो दवाई है 15 ml 20 cc वाली, वो भी हमें उसके साथ भी बीज उपचार करना है, ताकि आगे जाके किसान भाई किसी भी तरह की जो भी कीटनाशक, कीट की प्रकोप है, बीमारियों का प्रकोप है, उससे बच सके।
0: 15-20 ml पर किलो के हिसाब
1: हाँ,
0: से
1: 1 किलो के बीज के
0: वो
1: हिसाब से,
0: क्लोरोपायरीफास
1: हाँ
0: दवाई,
1: क्लोरोपायरीफोस 15 ml
0: 15 ml
1: 1 किलो बीज, और
0: हाँ,
1: कैप्टान 3 ग्राम 1 किलो बीज।
0: ये लगभग 600 ml के नज़दीक होगी
1: हाँ जी सर।
0: है, तो उतने तो उसका जो हम उस तरह, फिर दीमक का ही फर्क पड़ जाएगा
1: हाँ,
0: डॉक्टर साहब?
1: दीमक का भी है सर, क्लोरोपायरीफोस का दीमक भी, और जो सफ़ेद लट है उसके लिए एक ही है हमारी यूनिवर्सिटी में जो पैकेज में है, एक ही दवाई क्लोरोपायरीफोस 20 cc, जो 15 ml 1 kg के हिसाब से, अगर वहाँ नहीं कर पाते किसान भाई गलती से, तो थोड़े दिनों बाद, 15-20 दिन बाद, जैसे जब भी आपको दीमक का प्रकोप लगे या लगे आपके वहाँ पर सफ़ेद लट आ रही है, तो आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं सर।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: फिर उससे तो फिर ये बीज का उपचार अच्छा रहेगा,
1: हाँ बीज का उपचार तो
0: बीज
1: सर
0: का उपचार
1: सबसे
0: हो
1: अच्छा,
0: जाए सबसे बढ़िया हो
1: सबसे
0: जाए,
1: बढ़िया ही होता है सर।
0: क्योंकि बाद में तो मान लो ड्रेंचिंग हम कर भी
1: हाँ,
0: रहे हैं तो उससे इतना बढ़िया वो नहीं है,
1: उससे पौधे भी मरने का खतरा
0: मैं
1: रहता
0: वो
1: है बाद
0: खुद
1: में।
0: सेटिस्फाई वाली बात है, नहीं तो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं
1: जी
0: आएगा
1: सर।
0: उसका। तो डॉक्टर साहब देखो, जो हमने मान लो उसमें फिर बिजाई किस तरीके से करें उसकी?
1: सर इसमें सबसे पहले तो हमें मिट्टी और जलवायु का ध्यान रखना है। मिट्टी ऐसी हो जैसे बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, सभी प्रकार के जो मिट्टी है उसमें मूंगफली की बिजाई हो सकती है, लेकिन हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी खेत में हम मूंगफली की बिजाई लेना चाह रहे हैं उसमें जल निकासी अच्छी हो। अगर जल का भराव होगा तो मूंगफली के जो पौधे हैं वो निकलने से पहले ही वो खराब हो जाते हैं, और उसमें पैदावार कम आती है। तो एक तो जल निकासी, और दो रेतीली ज़मीन में काफ़ी अच्छे से मूंगफली की पैदावार ले सकते हैं हम। और बीज का मैंने बता दिया, अलग अलग किस्मों का बीज इसमें लगभग आपके 35 से 40 किलो लगता है एक किले में, और बीज उपचार अभी बताया मैंने। उसके बाद हाँ
0: जितना भी हम बीज ले रहे हैं उसी के हिसाब से दवाई है वो ले,
1: हाँ
0: क्या
1: दवाई
0: इसमें
1: का
0: मिट्टी का उपचार भी हम कर सकते हैं जैसे
1: नहीं, इसमें
0: शुरू में
1: मिट्टी
0: मिट्टी
1: का नहीं,
0: पूरे के
1: अभी
0: पूरे खेत का?
1: आप पूरे खेत का सर, मिट्टी में अगर सफ़ेद लट और जो ये एफिड्स का जो प्रभाव होता है उसके लिए एक है, उसमें आप जब भी आप अपने ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खेती करें उससे पहले अपना जो खेत है उसको मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जरूर जुताई करें उसकी, उसके बाद दो तीन जुताई करें ताकि जो ये लट है इनके जो प्यूपे हैं सफ़ेद लट है इनके प्यूपे बाहर आ जाते हैं और वो पक्षी उनको चुग ले जाते हैं
0: जी।
1: तो ये एक मिट्टी का ये वाला जो रोल है ये मूंगफली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है
0: जी। और जिस समय हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उसमें पहले एक गहरी जुताई कर दें उसके बाद फिर दो तीन
1: बिल्कुल
0: कर
1: सर
0: दें, इसका सही उचित समय क्या रहेगा डॉक्टर साहब जाएगा?
1: सर इसका हमारे हरियाणा के हिसाब से 15 जून से लेके और 30 जून तक का समय उपयुक्त है। वैसे तो 15 जुलाई तक भी करते हैं लेकिन 15 जुलाई के बाद अगर किसान बाई करते हैं तो उसमें पैदावार की कमी आने के पूरे पूरे चांस
0: जी। तो उसके लिए बीज का पहले अपना इंतज़ाम कर लें,
1: हाँ जी,
0: और जो है जहाँ हम बिजाई कर रहे हैं अपना बीज का उपचार कर लें।
1: बिल्कुल सर, ये कि मूंगफली में ना खाद बीज का बहुत वो रहता है, एक तो हमारे जो नाइट्रोजन है जो हम यूरिया देते हैं यूरिया इसमें सिर्फ 15 किलो चाहिए हमें, अगर जो फॉस्फोरस देनी है हमें तो वो हम SSP के थ्रू ही दे, अगर DAP के थ्रू देंगे तो फिर हमें नाइट्रोजन देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो मूंगफली है उसमें पैगिंग होती है, इसमें सुइया बनती है जिसको पैग बोलते हैं, तो उसके बाद उसमें नोड्यूल्स बनते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी वो पौधा अपने आप पूरी कर लेता है।
0: अच्छा।
1: तो शुरुआत में अगर DAP से हम खाद दे रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, अगर DAP से नहीं दे रहे हैं SSP से दे रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन देने की जरूरत है। SSP लगभग 125 किलोग्राम लगता है एक किले में और 13 किलो यूरिया लगता है, और जो MOP है जिससे हम के की म्यूटो पोटास है उसका लगभग हम 16 किलो, और इसमें एक सर और है जैसे ही मूंगफली आगे आगे पैदावार बढ़ती है इसमें जिंक की कमी आने लग जाती है
0: जी।
1: तो उसके लिए हमें जिंक सल्फेट भी डालना है 10 किलो के हिसाब से एक एकड़ में
0: जी। इसमें डॉक्टर साहब जैसे कुरड़िया खाद कुछ हमारे जो किसान भाई डाले तो वो किस तरह कितना डालना है कब डालना है?
1: अच्छा हाँ सर, ये कि जो कुरडी वाला खाद है इसका सबसे अच्छा वो है, अब हमें एक ये आता है जो ट्राइकोडर्मा आता है ये 1.5 किलो लेना है और उसको हमें 25 किलो जो गोबर की खाद होती है बीजाई से 15 दिन पहले उसमें डाल देना है ताकि
0: अच्छा।
1: वो अच्छे से गल जाए, और उसके बाद एक अरंडी की खल आती है
0: अच्छा
1: वो लगभग 100 किलो लेने के बाद फिर हमें पूरे जैसे हम खेत तैयार कर रहे हैं जब हम खाद बीज ये खाद डाल रहे हैं उसी टाइम इसको अरंडी की उसमें खड़ी में मिला के डालें तो जो आपकी बाद की जो तना गलन है जो आपकी कोलर रोट है जो पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं वो दोनों बीमारियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है ये चीज़ें।
0: तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब ये, और उसमें जो रासायनिक खाद है उसमें बता दिया कि मान लो हम SSP ले रहे हैं तो 125 किलो,
1: हाँ 125,
0: और DAP ले रहे हैं तो कितना लेना?
1: DAP ले रहे हैं तो सर 44 किलो DAP लगभग एक कट्टा मान लो आप, और उसमें फिर आपको 8 किलो यूरिया देनी पड़ेगी
0: DAP में भी?
1: हाँ जी, नहीं DAP नहीं दे रहे
0: तो फिर
1: नहीं,
0: तो नहीं,
1: DAP
0: नहीं।
1: अगर SSP दे रहे तो फिर आपको यूरिया देनी पड़ेगी।
0: अच्छा।
1: DAP दे रहे तो उसमें ऑलरेडी यूरिया की कमी पूरी
0: तो
1: हो चुकी
0: उसमें
1: है,
0: उसमें 12% खुद होता है,
1: 16% यूरिया भी होती है और 40% फॉस्फोरस भी होती
0: जी।
1: है
0: तो उसमें तो हम ये खाद डाल दें और फिर बाद में जैसे ही लगाओ हम उसमें शुरू की सिंचाई कैसे करें कितने समय के बाद?
1: इसमें मूंगफली में जो सिंचाई है उसमें लगभग 3-4 सिंचाई चाहिए, अगर किसान भाई किसी के पास अगर 1 या 2 सिंचाई की है तो पहली सिंचाई हमेशा जो फूल आते हैं लगभग 30 से 35 दिन पे आते हैं उस टाइम देनी चाहिए, अगर 2 सिंचाई की सुविधा है किसान भाई के पास तो पहले फूल आने पे, दूसरा जब उसका जो सुइया बननी स्टार्ट होती है, सुइया बननी इसमें लगभग 45 दिन से 90 दिन तक बनना स्टार्ट होती है तो दूसरी सिंचाई आपको लगभग 50 दिन पे करनी है। अगर 3 सिंचाई अगर किसान भाई के पास उपलब्ध है तो पहली फूल आने पे, दूसरी 50 दिन पे, तीसरी 70 दिन पे। अगर हम ज़्यादा ये जो फसल है मूँगफली की ये बारिश पर भी निर्भर करती है, अगर बारिश अच्छी हो रही है तो दो सिंचाई काफ़ी रहती है सर।
0: इसमें डॉक्टर साहब बिजाई करने का तरीका कौन सा से रहे, कितनी दूरी पे करें एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला वो कितना रखें?
1: सर मूंगफली की जो बिजाई है वो लगभग हमें 1.5 फुट पे करनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: 1.5 फुट पे मतलब 45 इंच पे, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 8 इंच होनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: जो फैलने वाली किस्म है उनके लिए ये है, और जो सिंगल नहीं भी कम फैलने वाली फसलें हैं सर उनके लिए लगभग 1 फुट और 6 इंच की, पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच की और खूड से खूड की दूरी वो लगभग 30 इंच 1 फुट के लगभग
0: जी। इसमें डॉक्टर साहब और क्या कुछ ध्यान रखें हमारे किसान भाई, मान लो ये पूरी की पूरी हम ये कह दिया भाई एक तो किस्म है जो अपनी वो बढ़िया लें,
1: हाँ जी सर,
0: भरोसे की जगह ते लें, मतलब 35 से 40 किलो जो बीज है वो एक ही लग है शायद पूरा है, DAP ले रहे हैं तो हमने यूरिया की जरूरत नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
0: बाकी SSP ले रहे हैं तो हम
1: यूरिया डालना पड़ेगा
0: 12 किलो
1: हाँ जी
0: जो यूरिया है वो ले लें, कुरड़ी की खाद यदि मान लो हम डालें तो उसमें क्या कुछ थोड़ी बहुत खाद की कमी करी जा सके?
1: खाद की कमी नहीं सर, वो अच्छा। जो आपकी बीमारी आ रही है तना गलन है, जो आपकी टिक्का डिजीज है, जो लीफ पे धब्बे बन जाते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है।
0: अच्छा।
1: खाद पूरा इसमें वो लगा,
0: खाद ये पूरा देना पड़ेगा, भले ही हमने कुरड़िया खाद डाल रखा है।
1: बिल्कुल सर।
0: और जो किस्म है वो तो डॉक्टर साहब बढ़िया आपने बताई है, ये कुछ तो अगले साल तक मिलनी शुरू होंगी। बाकी जैसे आपने प्रताप नंबर 1, 2 या 3 जो बताई हैं, उनका बीज कहाँ से लें, क्योंकि उनकी पैदावार बहुत अच्छी बता रहे हो आप
1: सर। उनका बीज है वो उदयपुर से मंगाना पड़ता है, अभी हमारे पास है नहीं। अगले साल से सारी जो भी अच्छी अच्छी किस्में हैं, राज मूंगफली है 3, 4, 5, तो इनका बीज भी हम दुर्गापुरा से, और जो प्रताप मूंगफली इनका हम उदयपुर से किसान भाइयों के लिए मंगा सकते हैं सर, पावल सेंटर से किसान भाई ले सकते हैं।
0: इसमें डॉक्टर साहब जो पैदावार बढ़ाने का थोड़ा बहुत नुकता है वो क्या बता सको आप हमारे किसान भाइयों को, भाई इससे ये पैदावार के कुछ कारण है जो जिन तक पैदावार बढ़ सके है?
1: बिल्कुल सर, जो मूंगफली की फसल है इसमें लगभग और जैसे फसलें हमारे पास है, बाजरा है, मूंग है, इसमें हम निराई गुड़ाई करते हैं, तो मूंगफली की फसल में भी हमें 2 निराई गुड़ाई करनी है, 1 20 दिन पे और 1 लगभग 35 दिन पे।
0: अच्छा।
1: और किसान भाई एक स्पेशल जो एक सबसे स्पेशल इसमें चीज़ है वो है इसकी निराई गुड़ाई, आपको इसमें फल जो सुइया बननी स्टार्ट होती है 40 दिन से लगभग 90 दिन पे, तो 40 दिन के बाद आपको बिल्कुल भी निराई गुड़ाई नहीं करनी है। अगर उसमें निराई गुड़ाई करोगे तो उसकी जो सुई है वो टूटने का डर है, वो कट जाएंगी और आपकी पैदावार बहुत कम हो जाएगी। तो ये इसमें सबसे अलग जो फसलों में है मूंगफली में, आपकी निराई गुड़ाई आपको 40 दिन के बाद नहीं करनी है बिल्कुल भी।
0: अच्छा, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, अच्छी किस्म लें, समय पर बिजाई करें, पूरी उचित मात्रा में।
1: एक इसमें सर जो बीमारियों का रहता है, इसमें एक तना गलन आता है और एक कोलर रोट आती है। कोलर रोट शुरू की स्टेज में आती है, जो जब पौधा लगभग 30 दिन का रहता है, तो उसमें जो मैंने अभी खाद बताई है गोबर की खाद, उससे भी काबू हो सकता है। और एक जो आपका बीज उपचार है वो बहुत अच्छा उसमें रोल प्ले करता है, तो उसमें हमें बीज उपचार बहुत जरूरी है उसका करना। और इसमें जो एफिड भी आते हैं, एफिड जो रस चूसक कीट होते हैं वो भी कई बार आ जाते हैं, तो वो तभी डालने हैं जब वो आए हैं, तभी आपको मेलाथियोन का स्प्रे करना है। मेलाथियोन का लगभग 250 ml 250 लीटर पानी में, तो एक स्प्रे वो करना है। अब मैं किसान भाई को एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मूंगफली की खेती करते हैं तो लगभग इसमें लागत और इसमें प्रॉफिट फायदा कितना होगा, तो इसमें लगभग शुरू से लागत का स्टार्ट करते हैं हम, तो शुरू में हम बीज कर लेते हैं, पहले खेत की जुताई करेंगे, 2-3 जुताई लगा लो, उसमें हैरोविंग है सारी चीजें, तो उसका खर्चा लगभग 3500 रुपए है। तो उसके बाद हम बीज लेते हैं, लगभग बाहर बीज मिलता है 100 रुपए किलो के हिसाब से, तो मैंने बताया आपको 35 से 40 किलो एक किलो, लगभग 4000 के आसपास इसका बिल वो हो गया। फिर हम बिजाई करते ड्रिल से करते हैं जनरली, 500-700 का वो खर्चा होगा, तो 4000 का मोटा मोटा ये खर्चा होगा, 7000 के लगभग। ठीक है, उसके बाद सर हम गोबर खाद ले रहे हैं और उसमें जो बेसल डोज डाल रहे हैं, जो शुरुआत की जो यूरिया है SSP है, उनका खर्चा भी मिला के हम देखें तो लगभग 3500-4000 का उसका खर्चा आ जाता है। 2-3 ट्रॉली डालेंगे तो 2-3000 का, तो ये सारा मिला के लगभग 7000 का और खर्चा आ गया, तो 14000 हो गए। तो उसके बाद हमें एक स्प्रे इसका 30 से 35 दिन पे जो माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है उसके पत्तियों में ना कई बार सफेद पत्ते आने लग जाते हैं, वो आयरन लोह तत्व जो होता है उसकी कमी होती है, और अगर उसमें पत्तों के बीच में अगर फिर स्पॉट बन रहे हैं तो वो जिंक की कमी है। तो ये जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जैसे 19-19-19 आ रहे हैं, उसका भी एक स्प्रे, उसका भी
0: फोलियो स्प्रे
1: वो भी फोलियो स्प्रे एक जरूरी है, तो उसका खर्चा। और आपको मान लो आपके पास कोई भी फंजी वो फफूंद आ रही है, उसका खर्चा, कीटनाशक का खर्चा, ये सब मिलकर लगभग 2700 का खर्चा ये है सर। और जो आपकी उखाड़ने में मूंगफली को उखाड़ने में जो लेबर लगी है तो उसका लगभग 4000 का खर्चा है, और आपको खेत से लेके मंडी तक पहुंचाने का खर्चा वो 1000 रुपए। तो ये सारा जो खर्चा मिला के किसान भाई का लगभग 22700 बनता है। और जो इसकी पैदावार मैंने आपको बताया 8 से 12 क्विंटल होती है, तो हम सब की नहीं मान के अपने एवरेज लेके चलते, तो 10 क्विंटल भी अगर पैदावार हो रही किसान भाई के पास, तो MSP पिछली बार 5850 था मूंगफली का, तो उसके अनुसार उसकी होगी लगभग 58000 की आमदनी। इस बार जो केंद्र जो सरकार है उन्होंने MSP 23-24 में 6377 कर दिया है, तो अगर 10 क्विंटल भी एवरेज भी पैदावार ले रहा किसान भाई
0: तो उसका
1: 63000 का लगभग फायदा हो गया, 22700-22500 मान लो, तो उतना आपने लगाया है और फायदा आपको 63000 लगभग हो रहा है, तो जस्ट डबल फायदा हो रहा है सर। तो ये किसान भाइयों के लिए मूंगफली की जो
0: खेती वो
1: बहुत ही लाभदायक है
0: जी। तो डॉक्टर साहब देखो बहुत अच्छे और विस्तृत तरीके से आपने बताया, तो डॉक्टर अशोक कुमार जी आप स्टूडियो में आए, हमारे जो श्रोता भाई हैं उनको बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइसेस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइसेस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाए आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर, आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइसेस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: भैया ने पहले तो बातचीत सुनी और फिर उसके बाद कुछ विज्ञापन भी सुन लिए। तो इसके साथ है जो अपना कार्यक्रम कृषि जगत चल रहा है उसका समय तय हुआ है, इस जगह पर समाप्त है। ईब सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार के बारे में भैया ने बता दें, ईब 7:10 तक ही हमारा प्रोग्राम जावा है। लेकिन चिंता ना करें, ये कोई विशेष कार्यक्रम जो आन लाग रहा है, जब इसका प्रसारण जब तक होगा, जब तक ये टाइम रहेगा, उसके बाद फिर कार्यक्रम पूरे समय तक जाना शुरू हो जाएगा। वो भैया ने पहले थोड़ी सी सूचना दे भी देंगे उस चीज़ की, क्योंकि जो कार्यक्रम बड़ा आकाशवाणी पीछे तो जो आए हैं वो चलाने जरूरी हुए हैं, इसके कारण थे 10 मिनट का टाइम मिला है। 10 मिनट हम अपना कार्यक्रम रहे वहाँ, उसके बाद फिर हमने छोड़ना पड़ा स्टूडियो। चलो, जैसे ही कार्यक्रमों का नज़दीक कोई बात लगेगी तो उसकी सूचना भैया जरूर दे देंगे, और बातचीत करेंगे, कुछ दो बात करके चलेंगे। गर्मी का मौसम है, लेकिन मनोरंजन पहले हो जाए तो ठीक लग गया। एक रागनी सुनेंगे जिसके गायक कलाकार रहेंगे रणबीर सिंह बड़वासिनी और उनके साथी।

भजन नाराग ने सुने, गायक कलाकार थे रणबीर बसो बड़वासिनी और उनके साथी। और ईब थोड़ी सी चर्चा करेंगे भाई, जो छोटे बालक से उन लू तक क्यों बचाओ, क्योंकि छुट्टी हो रही है, इवो घर हैं, घर पर वो बाहर भीतर घूमण फिरण की कोशिश करेंगे तो लू उनका ना लग गए, तो किस बात का ध्यान करना है। एक तो पानी और जो तरल पदार्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पिलाना है, थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पिलाते रहें। उन नींबू पानी, नारियल पानी या फिर लस्सी, कुछ इस तरह की चीज़ देवें। ORS का घोल भी दे सकें, यो भी फायदेमंद है। पानी तो भरपूर फल है, जो कर मान लिया तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है या खवास के हैं। और धूप तो बचाने खातर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बच्चा ने बाहर ना निकलन दें। और थोड़ा सा कोशिश करें, 12 बजे भी घनी गर्मी हो जाए है और 4 बजे भी ठंड नहीं शुरू होती, लेकिन यो ऐसा मौका है कि इसमें तो कति लिकड़ने ना दें। और हमेशा उन्हें अड़का रंग के ढीले है कपड़े और जो पूरे शरीर ने ढक लें, न्यू नहीं है कि वो कोई छोटा सा कोई पुरा दी कोई टी शर्ट सी और वो चाल गया काम ना, उनका शरीर का धूप लगेगी तो दिक्कत होगी। पूरा शरीर ने ढकने वाले पतले कपड़े और अड़के रंग के, रंग गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और बाहर जब धूप में जाओ तो देखो वो कोई चादर परना तो लेके नहीं जा सकते बालक से, तो टोपी पर आ दें या फिर उन्हें इस बात का डाल गेर दें, चाहे बोलकर अजी बड़ो बड़ा का कुछ भी, कोई बड़ा भाई है उसने समझा के, जब कितने बाहर जाओ तो छतरी ले जा, क्या दिक्कत है भाई, धूप तो बचाओगी अपना, उसने फिर लपेट के धर लें। और खाली पेट ना जान दें, मान ले घर तो बाहर निकले है ना, तो उन्हें खाली पेट ना जान दें। और ज़्यादा मीठे पदार्थ भी नहीं खाने इस मौके पर, क्योंकि गर्मी है ना। और जो जंक फूड है ना वो तो खाने नहीं, देखो ये कह तो दे हैं बात है, लेकिन बालक मानते को ना, यह बात आओगी दिमाग में मारे, आमनू मनाने हैं चाहे किसी तरीके से मनाने पड़ो, कोई और चीज़ उसके बदले वाम देश का है, थोड़ा सा सख्त इस मौके पर होना पड़ेगा। सर्दियों का मौका ऐसा आकर उसमें थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ खाई जाए तो वो चाल जाया करे, लेकिन इस टाइम पर तो जब मान लिया जंक फूड खाओ है ना, और ज़्यादा मीठे कोई पेय पदार्थ लगा लो, कोई पानी मीठा, कोई इस तरह की कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, नुकसानदायक है। दो बे ठंडे पानी तो बालक ने जरूर नुआ दे, एक बार तो सुबह का आदत होनी ऐसी है, या फिर दोपहर को शाम का टाइम पे, फिर जब तेज सी गर्मी बना है ना उस टाइम पे बालक ने ठंडा पानी तो जरूर नुआ दे। और घर के जो कमरे हैं इवनिंग तो नहीं कहेंगे भाई एसी ला दो, एसी की जरूरत नहीं हुआ कर दी, पंखा है वो चाल जाएगा वो ठीक है, कूलर चाल जाएगा, आवागमन उस कमरे में को हो जाए, बाहर की हवा आ जाए कोई बात नहीं, उस टाइम ठंडा हो जाएगा। और जब मान ले फिर भी कोई बालक का दिक्कत आएगी तो कुछ लक्षण तो दिखाई देंगे, तेज बुखार हो जा, उसकी चमड़ी लाल हो जा, कुछ उल्टियाँ लग जा, चक्कर आने लग जा, थका थका है महसूस होने लग जा, तो ठंडी जो जगह है उस जगह पे उसने लेटा ले, सूती कपड़ा पानी में बेलें जो पानी बिल्कुल ठंडा हो, और तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो तो उसकी खातिर डॉक्टर से संपर्क कर ले। तो ये कुछ बात ध्यान में करने की थी कि भाई जब मान ले कोई गर्मी का कोई मौका है, इसे कोई दिक्कत आवे बालक ने, तो लू तो बचाने खातर कई सारे ऐसे बात हैं वो कर सके हैं। एक तो खान पान का आया था मुख्य बात, कोई ऐसी चीज़ ना खिलाओ जो नुकसानदायक हो, पानी पिलाते रहें, नहलाने का आया था, कमरे में जितू सो हवा का आवागमन ठीक ठाक हो, और गाढ़ा रंग के कपड़े ना पहनावें, और कोशिश करें 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इस टाइम पे बच्चा ना निकले। ये कई सारी बात ध्यान करने की थी, तो इन्हें ध्यान करें और बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें और हम भी खुश रहें। चलो जो कार्यक्रम अपना ग्रामीण संसार चल रहा है उसका समय तो ही बीतना है, अगला कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें और दलजीत भाई ने इजाजत दें, सारे बाण भाइयों ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: The special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants are Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, KV Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator is Sonu Sood.
1: Ye Akashvani hai. Prastut hai vishesh shrinkhla. Iske antargat aaj suniye. Modi sarkar ke 12 saal, kisanon ke sashaktikaran aur krishi kshetra ke utthan ke prayason par charcha. Isme bhag le rahe hain. Bharat sarkar mein MSP aur krishi sudharon par uchchastariya samiti ke sadasya Binod Anand aur varishth patrakar KV Prasad va Prabhudat Mishra. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
2: Over the past 12 years, empowering India's Andatas, agricultural policy has widened its scope beyond welfare support to focus on structural and sustainable reforms which have strengthened productivity, income security, market access, modern infrastructure and institutional resilience. Record agricultural output, smart irrigation, easier credit, stronger insurance coverage and surged agricultural exports and allied sectors have empowered the farmers like never before, moving towards a more diversified, technology-driven and farmer-centric agricultural ecosystem. To discuss the various aspects of this robust 12-year journey of farmers' empowerment, the targeted interventions at the policy level, we have with us three distinguished guests, Mr. Binod Anand, member of government's High-Powered Committee on MSP and Agricultural Reforms, and senior journalists, Mr. KV Prasad and Mr. Prabhudat Mishra. A warm welcome to you gentlemen on Akashvani.
3: Thank you very much.
4: Thank you. Namaskar.
2: So we start with you, Mr. Anand. You know, the kind of transformational changes that we have seen in Indian agriculture over the past 12 years, the way the agricultural production has gone up, the productivity has grown by leaps and bounds, the exports have shown very, very robust figures. Can you tell us, according to you, what are the three major areas of the agricultural ecosystem which you feel have received the maximum reforms, the most significant and the most crucial reforms in these 12 years?
4: Certainly. Many thanks for inviting me on this very visionary program we have completed these many years. You see, the thing is that the investment in agricultural and structural reforms in all the sectors, this has given a new different kind of arrangements. GVA, especially, which is called the gross value in agriculture, that's in 2014-15, when the government has started this government, it was merely 20.9 lakh crore. Around 21 lakh crore, we can say. Today, it is pumping 49 lakh crore. So, it's almost 2.5 times. MSP, we have seen that whatever the previous government has done, 2.5 times of that government is already invested in MSP. There are five commandments over which the structural reform has taken place. First is how to beyond welfare points, that is adding farmers' welfare in the ministry name as per the recommendation of the Swaminathan Committee. The strengthened productivity, income security, the market access given, the kind of infrastructural reforms and institutional resilience. So over these five commandments, government has done a lot of activities. I will go one by one for them for the better understanding of what has been done. You see, in 2014, they started with a Rashtriya Gokul Mission. Thereafter, certainly there are two different ministries has been carved out. A fisheries department have been separated. But when there are Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Soil Health Card Scheme, what the government has thought about in 2016. And the most important one where we need to take a pause is a National Agriculture Market, that is Enam Mission. So through Enam, there is spot market is very active. And millions of farmers and thousands of businessmen, especially the Adatiyas, are registered over there and doing seamless businesses. Minimum support price we must have seen while in 2018 it was 0.1, 0.5 times it has gone up, whatever the recommendations were from A2 plus FL. So these are the few different kind of initiative has taken. The most important among them was the creation of Ministry of Cooperation, where all sort of Sahakar Se Samriddhi has been taken up. Three different multi-state cooperative has been created. One to create an export system, second to create organic farming ecosystem, and third, which is a very important one, to make the export market very robust. So that from the diversification to aligned activities to bioenergy and to creating additional income opportunity, a resilient and integrated agriculture system, this kind of structural reforms have given a big flip. And whatever you are watching at this moment this year, that's a mission for Atmanirbhar in Pulses. So these are a few visionary steps which earlier has not been taken up. And yes, these all schemes, what I'm talking about, is administratively quite implementable. And it is environmentally sustainable, economically viable, and most importantly, farmer-centric and very well diverse and technology-driven. So this is what in the first response I have given to you.
2: So Mr. Anand has so extensively outlined the various path-breaking changes which have taken place in these 12 years and what they really mean for the agriculture sector in a nutshell. If we come to you, Mr. Prasad, what do you think are the three most important initiatives of the government in these 12 years which really leap out, which you feel have transformed the Indian agriculture ecosystem and empowered the annadatas of our country and moved our country towards food security?
3: Sunilji, all of us do realize that agriculture is the backbone of a large section of a society. Depends almost 60% of the population is in this sector. It is own contribution, and the farmers of this country have worked hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently, I was talking to High Commissioner of African Nation, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not help place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only it produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said, it's much more what the population of Africa. I mean, so they said, we're looking to countries like India, which have. So this tells you the long journey our farmers have made in this country. And in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation. So the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation. And one of the things is per drop more crop, which is talking about micro-irrigation drip. And this has been, again, going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000, when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that's there. I think that one of the technological-driven aspect is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Yes. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
2: Yes.
3: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. Yes. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze, mm-hmm, you know, the creation of post-harvest management structure, okay, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the problems that have been affecting at this particular sector.
2: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
5: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
2: जी,
5: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके MSP डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा MSP से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो MSP से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में MSP नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में MSP से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, MSP से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है MSP पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहाँ पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो MSP से ऊपर है या MSP के बराबर के पोजीशन में है,
2: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
5: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2+FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा
2: जी,
5: तो
2: जी।
5: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो थी 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
2: जी,
5: कोई भी स्कीम हो।
2: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें MSP पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को MSP के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
4: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल MSP वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3, यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने MSP के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163%, यानी 163%, 1530 रुपए जो ज्वार की MSP थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि MSP को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
2: जी।
4: क्रेडिट की व्यवस्था में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। हाँ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप अमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
2: जी।
4: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
2: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
3: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं वो गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
2: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्री फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
3: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने December 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
2: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
4: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
2: जी।
4: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नियत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
2: पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
4: क्रेडिट सोसाइटीज जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ है वन नेशन वन राशन कार्ड और वही डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए।
2: जी
4: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
2: तो उनकी
4: आप कुछ
2: जरूरत
4: ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में एक्स बटा 8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं
2: जी।
4: और एक तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं, तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए। हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
2: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और

0: आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं, और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का, तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
0: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range,
1: right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator

0: Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में MSP और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है. प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत. कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने. फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा. समीर ने बोल लिखे हैं और नदीम श्रवण ने संगीत दिया है.

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दो बदन फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है रवि ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स
1: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है आराधना। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार ST बर्मन।

श्रोताओ आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत को लिखा है अनजान ने और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है याराना।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल के स्वर में आइए सुनते हैं बॉडीगार्ड फिल्म से ये गीत। सबीर अहमद ने बोल लिखे हैं, हिमेश रेशमिया ने संगीत दिया है।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लज्जा से, आवाजें हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और ऋचा शर्मा की। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक।

श्रोताओ, अब आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म का नाम है दबंग। आवाज़ है राहत फतेह अली खान की और गीतकार संगीतकार है साजिद वाजिद।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे कलाकार रहेंगे महेंद्र कुमार शर्मा।

श्रोताओ, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हमारे कलाकार हैं महेंद्र कुमार शर्मा। आप सुन रहे हैं इनकी गाई हुई गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे कलाकार थे महेंद्र कुमार शर्मा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुने हंसते जख्म फिल्म से कुछ गीत। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार थे मदन मोहन। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फ़ोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481-2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289-4044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर डबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना, चित्र रखना है तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह के खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पर उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जाँच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूँगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
0: जी, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
0: जी,
2: सब्जियों के लिए प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार। नमस्कार जी।
2: सब्जी, मेरा कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली भ्रमदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मजीत जी, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि ज़मीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उससे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारा खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं, और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को, और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है, और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ ज़मीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पर भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार में उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी मिल सके।
0: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहाँ पे क्या है ना एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
0: हो जाती
3: और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
0: डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश जी राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
0: डॉक्टर मीना,
3: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी

0: जिमर बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है और इसकी कमी कमी बहुत ज़्यादा है। किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो इसलिए सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी
1: है कि जो
0: है।
1: किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
2: जी, हम योगेश झांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
2: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकते हैं उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
3: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के इसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो।
4: हेलो
1: जी अनिल जी।
4: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
3: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है। इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में, तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादक संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों से साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
3: नमस्कार, नमस्कार जी।
5: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
0: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे

0: ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि 2-2 मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले 2 मीटर छोड़ना है, और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग कुएं जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहाँ से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई जैसे जो आपकी भी सीजनल फसल हैं जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले लिया और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके, और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है तो उसका लाभ ज़रूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
0: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं, और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप ज़रूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएँ और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएँ।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में। डॉक्टर,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पे इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है दलहनी फसल काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फसल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते हैं तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज़्यादा है और आज हम काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन हैं वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियाँ भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से एनरोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गाँव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियाँ भी चला रहे हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीज़ों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो विक्स डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद हैं जो उनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीज़ें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाएं। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले अपने खेत की मेड मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
3: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
3: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
2: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक स्मट एक गेहूँ में बीमारी आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है, जैसे हमने रुपाई करनी है, तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में इसको प्योद को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं, जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजोला है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज़्यादा लाभ देती हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
4: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना, आप क्या कहेंगे?
0: जैसे इंद्रभान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो वैसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि वहाँ
1: पे ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिस पे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
2: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1-800-1551 तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1-800-118989 तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा समय एक और भी नंबर है जिसमें आपको यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 011-2584-1670 ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर हम हिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पर डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
5: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी
5: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी,
5: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
5: जी जी जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
0: हाँ तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई या अम्लीयता हो गई उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी क्योंकि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही हम फसल से ज़्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत ज़रूरी है और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या है, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह पे वेरी करेगी और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
0: नमस्कार।

मिनीवेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज हमारे कलाकार रहेंगे डी के दातार। आप सुनेंगे राग यमन और पंचम से गारा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कलाकार थे डी के दातार। आपने सुने वायलिन पर बजाए राग यमन और पंचम से गारा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को मंजू शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मेरे हमसफर फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश कुमार की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। और फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से पत्र भेजा है प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय ने। और आप हैं शेरपुरा कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ये पत्र आया है आदर्श नगर मलोट से और भेजा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं के द्वारा। धनबाद झारखंड से हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, स्मृति, और झाझा बिहार से पत्र भेजा है संजीव कुमार सिंह, पूजा, रवि, आरती सिंह ने। आप है पटना बिहार से भुवनेश्वर, मीनू और लीलो। ये पत्र आया है रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र, हर्षित, मानसी शाह का। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है पेइंग गेस्ट फिल्म से ये गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की है, बोल लिखे हैं मजरू ने, संगीतबद्ध किए हैं एस टी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फागुन से। आवाज़ें हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की, गीत को कलमबद्ध किया है कैमार जलालाबादी ने और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की आई है। नया पारा भी रही से हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईशर राज सूर्यवंशी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्राची सूर्यवंशी और ट्यूशी सूर्यवंशी। आप हैं गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्रीकरण राजस्थान से। राजू टुटेजा, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मनु, आदित्य भूमि राखी अमृत बडवाल, शिव सेठी कर्णपुरी, स्माइल टुटेजा। ये पत्र आया है चंडीगढ़ से और भेजा है सतीश अनेजा बिमला अनेजा ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बैराग से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आप सभी की है, खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। ये पत्र आया है धामनी मनोरा से, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल और अनुत डेरे का। आप है छोटी बलिया मुंबई से, अहमद भाई फुलवाले, नुरेशा अहमद, सदफ, आरजू, जूही इकबाल फुलवाले, आमना, नशरीन और इमरान अहमद फुलवाले।

श्रोता, अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म का नाम है मजबूर। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, राशा भोसले की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ बेमेतेरा से हैं सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, बीरेंद्र ब्रजकांत सारथी। आप हैं नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पत्र भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। और आप हैं करमपुरा नई दिल्ली से कविता, गौरव, मानसी, अनिल मदान। ये पत्र आया है कैथल से मधु नायक का, और भिवानी से है जितेंद्र खेड़ा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।